गुड इवनिंग दोस्तों एंड वेलकम बैक. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है. दोस्तों यू आर लिसनिंग टू द फनीशिया नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग नॉन स्टॉप बॉलीवुड एंटरटेनमेंट हियर ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो एंड ऑल्सो ऑन 104.1 एफएम रेडियो कैरावैन. मोर वैरायटी है, मोर चॉइसेस है, मोर फन भी है, ओनली अंडर वन नेटवर्क विच इज फनीशियाज नेटवर्क. और दोस्तों मैं हूं आपकी होस्ट और आपके इस रिले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा. एवरी संडे की शाम 6 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ. जुड़े रहते हैं आप भी हमारे साथ हमारी फोन लाइंस के जरिए 9722355555 के जरिए. और आज के इस संडे की शाम में आपको गाने सुनवा रही हूँ ऐसे जो आपके दिल को दे सुकून पूरे के पूरे चाशनी में डूबे हुए. और इसके बाद एक फन सेगमेंट लेकर आने वाली हूँ आपके लिए. आपको कुछ गानों के बीच में की धुन सुनवाऊंगी और उस पर से आपको गाना कौन सा है ये पहचाना पड़ेगा. मुझे देखना है कि आप कितने बड़े वाले बॉलीवुड के फैन है. एंड स्पेशली ये वाले गाने और गानों की धुन जो मैं चलाने वाली हूँ वो हमारी देसी गर्ल पीसी के गानों के रहेंगे क्योंकि रिसेंटली शी celebrated her birthday on 18th of July. So भाई उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए उनके गानों को ट्रिब्यूट देते हुए हम ये सेगमेंट जारी रखेंगे. बट उससे पहले आपको कुछ अच्छे गाने सुनवाती हूँ, कुछ मेरे कुछ आपके पसंद के.

0: Once again, a masterpiece song sung by none other than Sonu Nigam and Shreya Ghoshal, taken from the movie Om Shanti Om. दोस्तों, आपको इस fun segment की तरफ लेकर चलूंगी, जो कि मैंने कहा था कि आपको PC के गानों के बीच में की म्यूजिक सुनवा कर आपको गाना ढूंढना पड़ेगा या फिर गाना पहचानना पड़ेगा कि कौन सा गाना मैं आपको क्लू करके दे रही हूँ. हमारा जो नंबर है 9723555555, वो अपने स्पीड डायल पर रख दीजिए, क्योंकि ये फन गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. एंड आई होप अगर आप पीसी के बहुत बड़े वाले फैन हैं तो आपको इन गानों का अंदाजा तो आ ही जाएगा. जैसे भी म्यूजिक आपको सुनवाऊंगी, वैसे ही फट से आपने मुझे कॉल करना है और बताना है कि कौन सा गाना है वो. उसके पहले आपको बता देती हूँ, द तंदूरी फ्लेम लोकेटेड इन गार्लैंड इज द न्यू फ्लेवर डेस्टिनेशन फॉर ऑल स्पाइस लवर्स, सर्विंग अप सिजलिंग तंदूरी प्लेटर्स, रिच करीज एंड ऑल योर North Indian favorites with that home style punch, from smoky tandoori kebabs to velvety curries and fresh hot naan. Every plate feels like a celebration. Step in today and let Tandoori Flame serve you the kind of meal that turns an ordinary day into a feast. Tandoori Flame Restaurant, which is located in Garland. With that, dosto, aapko sunwa rahi hoon ye wali dhun. Gaur se suniyega aur hamare नंबर पे स्पीड डायल करके फट से मुझे कॉल कीजिएगा और बताइएगा कि कौन सा है ये पीसी का गाना. सेलिब्रेटिंग पीसीज बर्थडे थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, बट नो वरीज देयर. आप मुझे कॉल करके फट से बता दीजिएगा कि ये कौन सा गाना है पीसी का. एंड हियर इज द धुन. स्टूडियो का नंबर 9722355555 है. अगर आपको फिर से एक बार धुन सुननी है तो ये रही धुन फिर से एक बार. वेल, मुझे एक कॉल आ रहे हैं तो देखते हैं, उनको लेते हैं ऑन एयर. कॉल ड्रॉप हो गया. 9722355555 है स्टूडियो का नंबर, जल्दी से जल्दी कॉल करिए और बताइए. गुड इवनिंग फनीशियर रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. हु इज दिस? आप रेडियो का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए पूरा. ओह माय गुडनेस. गुड इवनिंग फनीशियर रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. हु इज दिस?
1: हाय, माय नेम इज मोनिका.
0: मोनिका, कैन यू प्लीज टर्न डाउन द रेडियो प्लीज?
1: Yes.
0: All right. बताइए कौन सा गाना है? Yes, I can hear you better.
1: सलामे इश्क इश्क इश्क सलामे इश्क.
0: Perfect, Monica. आप प्रियंका चोपड़ा की फैन हैं?
1: हाँ, of course, I like her.
0: Perfect, perfect. And that's the reason you kind of guess the song very accurately. Thank you so much, Monica, for your call. Wonderful
1: Thank
0: talking
1: you.
0: To you.
1: Bye-bye.
0: Yes, bye-bye. ऐसे ही गाने चलते रहेंगे दोस्तों यहाँ पर only on 104.9 FM Fun Asia Radio पर. ये अगला वाला गाना सुनिए, उसके बाद आपको फिर से एक धुन सुनवाऊंगी पीसी के गानों की.

ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गाना रोजा मूवी से सुने थे दोस्तों आप सफी के रिक्वेस्ट पर। हमारा जो नंबर है 9723555555 जल्दी से जल्दी अपनी स्पीड डायल पे रख दीजिए क्योंकि अभी बारी है दूसरे धुन की। उससे पहले आपको बता दूं दैट दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट यू बाय एजी फिनटेक्स व्हिच इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द यूएस। दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। दे आर ट्रस्टेड efficient and get you ready for the future. You can call them. The number to call is 4699429888 or you can visit their website which is agfintechs.com. 9722355555 hai studio ka number. Aapko PC ke gaano ki dhun sunwane wali ho aur us par se aapko gaana sahi sahi pehchanna hai. Dekhte hai aap PC ke Priyanka Chopra ke kitne bade fan hai. 9722355555 is the number to call the studio aur ye rahi धुन।

0: आई नो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट हमको कोई कॉल कर रहा है, लेते हैं उनको ऑन एयर. जब भी आप मुझे कॉल करेंगे, आप अपने रेडियो का वॉल्यूम पूरा का पूरा बंद कर दीजिएगा. गुड इवनिंग फनीशिया रेडियो, योर लाइव ऑन एयर. हु इज दिस?
1: दिस इज गुनगुन.
0: गुनगुन बताइए कौन सा गाना था?
1: तू ना जाने आसपास है खुदा.
0: वाओ, कैन यू सिंग इट फॉर मी?
1: तू ना जाने आसपास है खुदा.
0: अगर आप पीसी के बहुत बड़े फैन है तो आपको ऐसे गाने तो समझ में आ ही जाएंगे. एंड दिस वॉज एब्सोल्युटली राइट. दिस सॉन्ग वॉज टेकन फ्रॉम द मूवी अनजाना अनजानी एंड द सॉन्ग वॉज तू न जाने आस पास है खुदा. तू न जाने आस पास है खुदा. अभी इतने अच्छे गानों की बात निकली है तो चलिए ये गाना आपको सुनवा भी देती हूँ. एंजॉय दिस ट्रैक.

राहत फतेह अली खान की साहब की आवाज में सुने थे दोस्तों आप ये गाना टेकन फ्रॉम द मूवी अनजाना अनजानी। पीसी के गानों के कुछ धुन आपको सुनवा रही हूँ और उस पर से आपको पीसी के गाने पहचानने हैं और सही सही गाने हैं। स्टूडियो का नंबर 9722355555। विद दैट आपको लेकर चलती हूँ अगली धुन की तरफ। हमारा जो नंबर है स्पीड डायल पर रेडी रखिए और जब भी आप मुझे कॉल करेंगे तब आप रेडियो का वॉल्यूम पूरा का पूरा बंद करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर जब आप कॉल करते हैं और रेडियो जब शुरू रहता है इन द बैकग्राउंड बहुत इको आता है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर टर्निंग ऑफ योर रेडियो वॉल्यूम्स। वेल विद दैट आपको लेकर चलती हूँ इस अगले धुन की तरफ। गाना पहचानिए और कॉल कीजिए 9722355555 है स्टूडियो का नंबर।

ये साहब, तो ये तो बहुत बड़ा ज्यादा हिंट हो गया। अगर आप पीसी के बहुत बड़े फैन हैं तो ये तो आपको पहचान में आना ही चाहिए। चलिए फिर से एक बार आपको धुन सुनवाती हूँ। स्टूडियो का नंबर 9722355555।

0: कोई तो भी मुझे कॉल कर रहा है, चलिए लेते हैं उनको ऑन एयर. गुड इवनिंग फनीशिया रेडियो, यू लाइव ऑन एयर. हु इज दिस?
1: हाय, दिस अनुपम हियर.
0: अनुपम जी बताइए कौन सा गाना था.
1: ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके, वो दिल में तेरा नाम है. परवाह क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है. देवर्षि गणेश.
0: क्या बात है अनुपम जी, बहुत सही और बहुत सही पहचाना. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. गुड इवनिंग फनीशियर रेडियो, यू लाइव ऑन एयर. हु इज दिस?
2: धर्मिष्ठा.
0: बताइए कौन सा गाना था.
2: देवाश्री गणेशा.
0: वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. गुड इवनिंग फनीशियर रेडियो, यू लाइव ऑन एयर. हु इज दिस?
3: हाय, दिस इज सुरभि. आई जस्ट वांटेड टू आंसर.
0: यस बताइए सुरभि कौन सा गाना था.
3: जय गणेश देव
0: श्री गणेशा. जी हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट. थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल वंडरफुल कॉल. जी हाँ भाई, पीसी के तो बहुत बड़े बड़े फैन हैं हमारे डैलस में. तो चलिए, देवा श्री गणेशा का अगर अभी जिक्र हुआ है तो ये गाना सुन भी लेते हैं. एंजॉय दिस ट्रैक गाइज़.

0: moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
3: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सस के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सस बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
4: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
5: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं.
4: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
5: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
4: और एंटरटेनमेंट,
5: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में.
4: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
5: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
6: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
7: यार, मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज हैं यार.
3: तो चल, उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं.
7: What?
8: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
9: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
10: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
9: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
10: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
9: सच में? सब संभालेंगे?
10: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.

मोर म्यूजिक मोर मस्ती और मोर मैजिक के साथ दोस्तों आपको फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। दोस्तों स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं 7:35, बस कुछ चंद मिनटों का सफर बचा है आपका और मेरा। जिन्होंने अभी अभी ट्यून किया है उन सभी को बता देती हूँ, आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा को। एवरी संडे की शाम 6-8 रहता है आपका और मेरा साथ, जुड़े रहते हैं आप भी हमारे साथ हमारी फोन लाइंस के जरिए 9722355555 के जरिए। ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ही अमेजिंग सा प्रियंका चोपड़ा के गानों का सेगमेंट हम कर रहे थे, आपको गानों के दौरान जो म्यूजिक बजता है वो सुनवा रही थी और उस पर से आपको गाना पहचाना था कौन सा है। एंड विद दैट ये वो जो सेगमेंट था वो अभी खत्म हो चुका है, बस अभी अपना हमारे 30 मिनट्स के सेगमेंट में हम कुछ अच्छे अच्छे हल्के फुल्के गाने सुनेंगे, कुछ अपडेट्स लेंगे एंड फिर टाटा बाय बाय कहने का समय आ जाएगा। वेल दोस्तों आज के पूरे शो में मैंने आपको ऐसे गाने सुनवाए जो आपके दिल को दे रहे थे बहुत ही अच्छा सा सुकून, टोटली चाशनी में डूबे हुए गाने आपको सुनवा रही थी और विद दैट इस गानों की एडिशन आपको करवा देती हूँ क्योंकि ये गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट ट्रैक।

Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhudeva, live to DFW. Joining him are Lauren, Sonal Bhaduria, Alexander Noel, Harini Nikalantan, Natasha Sherpa and Sanvi Meghna for the Ultimate Pan-Indian Dance Concert, Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call them. The number to call is 248-233-3828. Media partner Fun Asia Network. और इस टिकट और इस इवेंट को देने के लिए एक गिव अवे टिकट है मेरे पास. तो अभी आपको मुझे सिर्फ ये बताना है कि ये जो अगला गाना मैं यहाँ पर प्ले करने वाली हूँ ये कौन से मूवी का है. अगर आपने मुझे इस जवाब सवाल का सही सही जवाब दिया तो आप जीत सकते हैं वन टिकट फॉर दिस प्रभुदेवा इवेंट. आपको बताना है कि ये अगला गाना कौन से मूवी का है और स्टूडियो का नंबर 9722355555. सही जवाब देने वाले को मिल सकता है प्रभुदेवा इवेंट का वन टिकट बिल्कुल फ्री फ्री फ्री. आपको मुझे बताना है कि ये गाना कौन से मूवी का है. 9722355555 है स्टूडियो का नंबर.

ऑलराइट दोस्तों, इसी के साथ स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं 7:55, यही कहूंगी वक्त हो गया है मेरे जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आज की शाम साथ निभाने का। जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि ये जो गाना चल रहा था यहाँ पर, आपको मुझे इस मूवी का नाम बताना था और सही जवाब मुझे दिया है श्रीरंग जी ने। तो श्रीरंग जी जीत चुके हैं प्रभुदेवा इवेंट का 1 टिकट, बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। वेल दोस्तों, अभी टाटा बाय बाय कहने का समय आ चुका है, तो चलिए इसी के साथ मैं यही कहूंगी कि ये फनीशिया रेडियो का स्टूडियो मेरी हैप्पी प्लेस है। यहाँ पर आकर मैं जितनी हैप्पी हैप्पी होती हूँ उतना ही हैप्पी हैप्पी आपको बनाने की मेरी इच्छा आकांक्षा और मनोकामना रहती है। With that, live fully, love passionately and laugh loudly. लेती हूँ आप सबसे विदा इसी थॉट के साथ और करती हूँ नेक्स्ट संडे सेम टाइम सेम शो सेम चैनल ऑन 104.9 FM पर मिलने का वादा। दिस इज योर होस्ट आरजे पूर्वा साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। दोस्तों, हैव अ ग्रेट नाइट अहेड एंड हैव अ ब्यूटीफुल मंडे मॉर्निंग एंड द रेस्ट ऑफ द वीक अहेड। अगला आने वाला वीक बहुत ही गर्म टेम्परेचर रहने वाले है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर हाइड्रेटेड एंड स्टे योर सेल्फ कूल एंड इस गर्मी से खुद को बचाइए, खुद की फैमिली को बचाइए और प्लीज टेक केयर आउट देयर। विद दैट, बाय बाय एंड गुड नाइट।

वाओ, सो मेनी रिक्वेस्ट कमिंग अप. लोग मुझे बोल रहे हैं, प्रेम भाई रिमिक्स वर्जन चलेगा क्या? मैंने बोला क्यों नहीं यार, वो एल्बम का पार्ट है. सो डेफिनेटली रिमिक्स आर वेलकम. लेट अस नो योर जैम 972-235-5555. और हमारे सब स्पेशल लिसनर्स के लिए मेरी तरफ से एक जबरदस्त गिव अवे आने वाला है. ठीक है, ठीक 8:30 बजे आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक वी विल प्ले आर वर्ल्ड फेमस बॉलीवुड क्विज. और इस बार हमारे विजेता को मिलेगा एक टिकट फॉर द प्रभु देवा कॉन्सर्ट. या इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग लेडीज एंड जेंटलमैन. प्रभु देवा इज गोइंग टू कम टू आवर टाउन एंड आई वांट टू मेक श्योर दैट यू आर एबल टू पार्टिसिपेट थ्रू दिस बॉलीवुड क्विज. सो प्लीज मेक श्योर यू गो टू आवर इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस, जस्ट फॉलो अस देयर एंड वी विल बी पुटिंग डाउन ए स्टोरी. एक छोटा सा हिंट हम पहले ही डाल देंगे उस पर. खेलेंगे हम हमारा क्विज 8:30 बजे, हमारा कमर्शियल ब्रेक होगा, उसके बाद तुरंत ही हम चालू कर देंगे. बट द इंस्टाग्राम पेज दैट यू शुड बी फॉलोइंग इज प्रेम जोशी पॉडकास्ट, PREMJOSHI पॉडकास्ट. एक छोटा सा हिंट उस पर डाल दिया है, फॉलो करना जरूरी नहीं है. ऑब्वियसली विल सेंड द क्वेश्चन, विल वॉइस इट आउट, विल गिव द नंबर अगेन, विल प्ले दिस ऑन एयर. इट्स गोना बी अमेजिंग. ठीक है, सो मेक श्योर यू कीप ट्यूनिंग इन on the airwaves of Phonesia 104.9 FM. अभी मेरी बात हुई राहुल से, who always recommends some amazing songs. और आज उन्होंने recommend किया है राघव का Angel Eyes.

0: बहुत अच्छा शॉट दिया।
1: थैंक यू। मेरे लिए तो ये सब एक ख्वाब जैसा है।
0: ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, पर ये हकीकत है।

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
3: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
2: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
3: Papri चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट.
4: डैलस, आर यू रेडी? जाबू टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओ भी. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर पन एशिया.
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
5: Kya matlab?
6: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
6: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: Ab to karna hi padega, madam.
4: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: In today's busy world, when was the last time you truly paused and listened to yourself? Rediscover peace at the Osho Meditation Retreat from July 31st to August 2nd at Osho Kevalya Dham in Denison, Texas. Experience dynamic and silent meditation, joyful music, celebration, and deep inner transformation with Swami Prem Maitreya. Whether you are new to meditation or have practiced for years, you are welcome. Limited seats are available. Register today by calling 214-395-6757 or visit oshouniversal.org.
8: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.
9: Welcome back, ladies and gentlemen. This is the Sunday Pop Station with RJ Prem. I hope you're having an amazing Sunday evening with your friends, family, and loved ones. और हमारे सारे लॉयल नर्सेस को तो पता ही है कि ठीक अभी वक्त हो चुका है हमारा वर्ल्ड फेमस बॉलीवुड क्विज खेलने का. वैसे ये क्विज सिर्फ डैलस वासियों के लिए है बट ये बहुत वर्ल्ड फेमस है लेडीज एंड जेंटलमैन, बिकॉज हमारा शो नॉट जस्ट थ्रू आर एयरवेव्स बट इट इज ऑल्सो ट्यून्ड इन थ्रू आर एप्स एंड एवरीवेयर. सो पीपल आउटसाइड फ्रॉम डैलस आर ऑल्सो लिसनिंग टू अस. सो थैंक यू टू एवरीबॉडी हु टेक्स अ टाइम आउट and listens us. I know we are always part of some journey, right? Some people are going for their grocery runs. Sunday hai, to you know, weekly grocery run kar rahe. Some people are coming back to home from their get-togethers, from their dinners. Jo bhi kar rahe, aap hume sun rahe, that's the best part, right? And we are all so thankful for that. Ye gaane ke baad, as sabhi ko pata hai ki hum khelne wale hamara Bollywood quiz. प्लीज मेक श्योर यू गो टू आर इंस्टाग्राम हैंडल, क्योंकि वहां पर हमने हिंट डाल दिया है. अगर आपको हिंट की जरूरत नहीं है तो भी कोई बात नहीं, वी कैन ऑलवेज लेट वी विल ऑलवेज गिव अ क्विक क्वेश्चन गाने के बाद. आपको समय भी देंगे, आपको नंबर भी बोलेंगे और हम ये ऑन एयर खेलेंगे ये बॉलीवुड क्विज. ऑलराइट, सो यू कैन गो टू द इंस्टाग्राम फॉर द हिंट. इट्स कॉल्ड प्रेम जोशी पॉडकास्ट, PREM JOSHI पॉडकास्ट. उस पर जाइए, हिंट डाल दिया मैंने.

iconic of us. This song can never be old, right, ladies and gentlemen? Even though it's 25 years old song, it still feels relevant. It still feels fresh and amazing. All right, Devio Sajano, Bhaiyo Behno, Vakt Ho Chuka Hai, Hamara World Famous Bollywood Quiz Ka. Thank you so much for patiently waiting. I know quite a few folks have already been two steps ahead. Instagram handle pe aapne jaake hint dekh liya hai. But jin log ko time nahi mila, कोई बात नहीं, हम आपको क्वेश्चन अभी बोलने वाले हैं. तो ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट आर ग्रैंड स्पॉन्सर, बिकॉज वी आई डू वांट टू मेंशन अबाउट मतांगी एंटरटेनमेंट ग्रुप हु आर ब्रिंगिंग इंडियाज माइकल जैक्सन प्रभु देवा लाइव टू डैलस फोर्ट वर्थ, जॉइनिंग हिम एट लॉरेन गॉटलिब, सोनल भदूरिया, अलेक्जेंडर नोएल, हरिणी, नताशा एंड मेघना फॉर द अल्टीमेट पैन इंडियन dance concert. It's going to happen on the August 1st, that is a Saturday, at the Texas Trust CU Theater in Grand Prairie. All right, so aap tickets book karne ke liye call kar sakte hai 248-233-3828, and of course the media partner is our Funasia network. To abhi main aapko ye bata deta hu ki hum ek ekdam sa easy sawal puchne wale hai, aur us easy sawal ka hoga easy jawab. Jo sabse pehle hame wo jawab dega, उसे हम देंगे वन टिकट फॉर द अमेजिंग कॉन्सर्ट. एंड इफ यू हैवन अटेंडेड अ प्रभु देवास कॉन्सर्ट, आई हाईली हाईली रिकमेंड यू डू इट, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग. यू विल फील लाइक ओ माय गॉड, व्हाट डिड आई जस्ट सी. वो वाली फीलिंग आएगी वो कॉन्सर्ट अटेंड करने के बाद. ठीक है, तो आपको मैं एक सिंपल सा सवाल ये पूछने वाला हूँ कि वैसे तो प्रभु देवा जी ने बहुत सारी हिंदी मूवीज को डायरेक्ट किया है, आपको सिर्फ मुझे ये बताना है कि उनकी तीन मूवीज के नाम, यू जस्ट हैव टू नेम थ्री हिंदी मूवी नेम्स दैट प्रभु देवा हैज डायरेक्टेड. कीप इन माइंड, डायरेक्टेड. ऑलराइट, लेट अस नो एंड वी विल प्ले.

All right, ladies and gentlemen, thank you so much for the calls. यार मैंने जितना हो सके मैंने calls उठाए, but क्या करे यार, पहले ही 5th second पे मुझे call आ गया और जो पहले caller है हमारे राहुल भाई, उन्होंने फट फट जवाब भी दे दिए, सही जवाब भी दे दिए. मैं होप कर रहा था यार कि यार वो गलत जवाब दे, but unfortunately उनका प्रभु देवा का उनका नाता ही ऐसा है कि not only he answered me all the 3 movies, but he answered like 8 of them. Right, he answered all the movies that Prabhu Deva has directed. So I tried to pick up as many calls as I could. I spoke to Monica, Radha, Ridhima. मैंने बहुत सारे लोगों से बात की यार. So I appreciate everybody calling, but of course we just have 1 ticket, 1 giveaway. But please नाराज मत होइए, because we play this Bollywood quiz every single week. जी हाँ, हमारे स्पॉन्सर्स बदलते रहते हैं, हमारे गिवअवेज बदलते रहते हैं, बट हम ये बॉलीवुड क्विज ऑन दी एयरवेज ऑफ फनीशिया हमेशा खेलते हैं 8:30 बजे आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक. सो इफ यू लाइक आवर शो, इट्स कॉल्ड द संडे पॉप स्टेशन विद आरजे प्रेम. प्लीज मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, प्रेम जोशी पॉडकास्ट, PREMJOSHI podcast. We talk to amazing subject matter experts from finance to health to Ayurveda, astrologer, immigration lawyer. Hum sabhi se baat karte that makes our lives better in America. So hope you guys liked it. Hope you guys enjoyed it. Thank you so much for calling. Keep him coming. Kyunki hamara show 10 baje tak hai. To koi gaane ka recommendation ho, koi suggestion ho, let us know. We'll play them. 972-235-5555. DMs are also open. Prem Joshi Podcast, PREMJOSHI Podcast. Ladies and gentlemen, we give you.

वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द संडे पॉप स्टेशन विद आरजे प्रेम। वैसे हमारा गिव अवे और हमारा बॉलीवुड क्विज 8:30 बजे का था, वो खत्म हो चुका है, बट आज हमारा दिल बहुत बड़ा हो गया है बिकॉज देयर इज अनदर गिव अवे फॉर अस, फॉर यू अमेजिंग लिसनर्स ऑफ फनेशिया रेडियो। हमारे पास एक अमेजिंग गिव अवे है, $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन। और हम एक बहुत ही ईजी सवाल पूछने वाले हैं। अभी आपने एक हमारा गाना सुना, सुपर डुपर हिट गाना, ब्लॉक बस्टर सॉन्ग विच इज कॉल्ड आज की रात, पिक्चराइज्ड ऑन तमन्ना भाटिया, सिंगर इज ऑफकोर्स मधुबंती बागची। आपको से मुझे ये बताना है ये कौन सी मूवी का है। दैट्स इट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वॉट मूवी वॉज दिस सॉन्ग फ्रॉम, आज की रात जो हमने सुना, उस मूवी का नाम बता दो यार, और ये $10 गिफ्ट कार्ड लेके जाओ। 972-235-5555, 972-235-5555, here we go।

0: now it's the Kalka.
1: So many interesting songs are coming up, yaar, kyunki I've been doing this for a while, ladies and gentlemen, and I think I know all the songs. I think I know, like, arre yaar, ye gana to abhi bajaya tha, ye gana to do din pehle bajaya tha. But there are so many songs that have been recommended now by our amazing listeners that it feels like I haven't heard them from decades, and I love these songs. So please keep them coming, ladies and gentlemen. 80% of the songs that we are playing are all suggested by all our amazing listeners of Funisher Radio. This is the Sunday Pop Station with RJ Prem. अगर आपको हमारा गाना पसंद आ रहा है, अगर आपको हमारा शो पसंद आ रहा है, प्लीज मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज वी आर डूइंग अमेजिंग स्टफ आउट देयर ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक, ऑन यूट्यूब. जस्ट फॉलो अस देयर. इट्स कॉल्ड प्रेम जोशी पॉडकास्ट, PREM JOSHI, प्रेम जोशी पॉडकास्ट. वी टॉकिंग टू अमेजिंग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फ्रॉम फाइनेंस, हेल्थ, इमिग्रेशन, एस्ट्रोलॉजी, यू नेम इट, एंड वी आर टचिंग ऑल द टॉपिक्स दैट इम्पैक्ट आवर लाइव्स in America. Here we go. Next gana, Sanjay ne recommend kiya hai hume, 10 bahane karke le gaye dil.

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर jagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Fun Asia
1: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार
2: तो चल उन सेल्फी से पिज़्ज़ास खाते हैं
1: व्हाट
3: दिस फ्रेंडशिप डे ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज़्ज़ा किचन पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम टैग फन पिज़्ज़ा किचन एंड एंजॉय 10% ऑफ योर बिल और अ फ्री गार्लिक ब्रेड ऑफर वैलिड टिल ऑगस्ट 3rd विजिट funpizzakitchen.com फॉर मोर डिटेल्स
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
4: क्या मतलब?
5: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
5: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
4: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
6: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.
8: Man.

0: Club Phonasia.
1: I'm loving the music.
0: The ultimate destination for Bollywood dances.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
5: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
4: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
5: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
4: सच में सब संभालेंगे?
5: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
6: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
7: रुको जरा, सबर करो।
8: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून्ड टू फनेशिया।

0: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.
1: Experience the thrill of the dance floor like never before with Club Fanasia.
2: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khan Zada, jinhone apne kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye The Jago Times available hai ek click par. TheJagoTimes.com. For more details and advertisements, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
3: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार
4: तो चल उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं
3: व्हाट
5: दिस फ्रेंडशिप डे ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज़्ज़ा किचन पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम टैग फन पिज़्ज़ा किचन एंड एंजॉय 10% ऑफ योर बिल और अ फ्री गार्लिक ब्रेड ऑफर वैलिड टिल ऑगस्ट 3rd विजिट funpizzakitchen.com फॉर मोर डिटेल्स
6: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

0: Club Phonasia.
1: I love it.
0: The ultimate celebration of music and rhythm.
2: नमस्ते बहन और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये।

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं,
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

Storming into a million hearts. 104.9 FM. Number one hit station.

0: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
1: तो चल उन सेल्फी से पिज्जास खाते हैं।
0: व्हाट
2: दिस फ्रेंडशिप डे ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज्जा किचन। पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम टैग फन पिज्जा किचन एंड एंजॉय 10% ऑफ योर बिल और अ फ्री गार्लिक ब्रेड। ऑफर वैलिड टिल ऑगस्ट 3rd। विजिट funpizzakitchen.com फॉर मोर डिटेल्स।
3: Some journeys begin with silence and some begin with devotion. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: बोरिंग दिनचर्या में
1: घोलिए नए रंग फन एशिया रेडियो के संग।

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: tracks that put you on the right track.
1: Banjo!
2: लुट गया मैं सोनी तेरे प्यार में, मारना दे मैनू इंतजार में।

0: बोले नीचे से रे नीचे से।
1: सुनी रानी नी ठाट बाट देख किंग दे तू ही जच दी है नाल इस सोने सिंह दे।

0: Que dil kar tu cha tu cha cha Que dil kar tu cha tu cha cha
1: Kaun hai ye log? Kahan se aate hain ye?
2: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: अरे गुट में स्वैग है, अरे गुट में स्वैग है, अरे गुट में स्वैग है, अरे गुट में स्वैग है।
1: शुपोए बादशाह
0: बंटा रहे फ्लाइ बॉय, ये हम लाइफ पे हाई बॉय, ये तू रख तेरी राय बॉय।

0: जेल से छुटेगा और एक ही दिन में आप सबको खत्म कर देगा।
1: बदराम, वाट लगने रे पोरची।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: बेटा 95% आए?
2: हाँ मम्मी।
1: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
3: मेरा?
1: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
3: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: हाय, दिस इज कुणाल कपूर एंड यू आर लिसनिंग टू फनी शो रेडियो।

0: डाक टिकट जारी होगी।
1: The Magic 24/7 only on 104.9 FM.

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: In today's busy world, when was the last time you truly paused and listened to yourself? Rediscover peace at the Osho Meditation Retreat from July 31st to August 2nd at Osho Kevalya Dham in Denison, Texas. Experience dynamic and silent meditation, joyful music, celebration, and deep inner transformation with Swami Prem Maitreya. Whether you are new to meditation or have practiced for years, you are welcome. Limited seats are available. Register today by calling 214-395-6757 or visit oshouniversal.org.
4: अरे हम जानते हैं दुकान के मालिक को, बहुत मेहरबान है, पैसे नहीं लेंगे उसके लिए।
5: मुफ्त में कोई मेहरबान नहीं होता, ये लड्डू के बदले ले जाने कौन जायदाद मांग लो तुम।
4: शाम को मिलता हूँ,
5: मेहरबानी करके कुछ

0: तो रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।
2: डैड को लगता है मैं गाने के साथ लिप्स मैच नहीं कर सकता। ही इज रॉन्ग। वॉच मी।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

जाने लेके किस्मत में बांटे हैं राहों में कांटे हैं।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशा 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Some journeys begin with silence and some begin with devotion. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.

0: कितने आदमी थे?
1: सर का पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।
2: मेरा यार

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
3: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
4: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
3: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज.
4: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट.
5: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
6: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
5: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
6: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
5: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
6: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
5: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
11: Some journeys begin with silence and some begin with devotion. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.
12: Ladies and gentlemen, welcome to the show. Let's go ahead and get this week started, the final week of July, with this scorching heat is where we are starting it. And of course, I'll have details coming up for you. Sabse pehle, tareef us upar wale ki, jisne duniya banai, chand sitare banai, zameen aasman banai, insaan ke dil mein mohabbat ka jazba paida kiya, usi upar wale ki tareef hai, jisne mujhko, aapko aur ye saari kainat ko insaniyat ko aage badhane ke liye banaya hai. Aap sabko mera pyar bhara namaskar, sat sri akaal, assalamu alaikum, yaali madad, and a very good morning to all of you.

0: वैसे कोई चांस नहीं है हमारे फ्यूचर व्यूचर का, ऑल दोस अग्नि के फेरे एंड ऑल, मानता नहीं हूं मैं, बट लाइफ कैन बी अनप्रेडिक्टेबल, यू नो, किसे पता आगे क्या हो। हे मीरा,
1: कम।
0: आई वॉज थिंकिंग हम डिवोर्स पेपर्स होल्ड पे भी रख सकते हैं कुछ दिन, यू नो, दोनों को थोड़ा टाइम मिल जाएगा कुछ सोचने को कि

0: Let's get you some messages from our sponsors, and then we will have the world news also coming up for you very shortly.
1: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
2: Call 857-891-8942 today.
3: Hocho.
4: Hoko.
3: Hocho.
4: Hoko.
3: Hocho.
4: It's Hoko.
5: Arey, bas bhi karo yaar.
4: Arey, naya restaurant hai, but naam samajh hi nahi aa raha hai.
5: Naam Hoko ho ya Hocho, kya farak padta hai? Ek baar wahan ke legendary chana puri, iconic sandwiches, delicious curries, chaats aur famous cold cocoa taste karoge na, phir naam nahi, sirf taste yaad rahega.
2: India ke sabse loved food brands mein se ek, Hoko, ab Frisco mein. Wahi iconic flavors, wahi unforgettable taste, and varied catering options. Taste India. Relive memories.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: Ab to karna hi padega, madam.
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Ye tara wo tara har tara.
10: Arre arre arre. Dallas ke aasmaan mein itne सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
11: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।
12: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे।
13: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
2: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर। आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर। आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर। प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
12: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
14: जिंदगी एक रंगमंच है
15: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल। हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
2: कॉल 972-897-1530 firstunitedtexastitle.com।
16: इस रक्षाबंधन चौकटॉ कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटॉ कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
2: चौकटॉ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरांड, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।

0: Let's move on with our program, but we'll have to end this hour of the program first, and then we'll start the final hour of our program on this lovely Monday morning as we get the week started for you. Thank you very much for making me a part of your morning and letting me into your cars as I drive you to your destination right at 9 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
5: कौन सा?
4: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
5: अरे सारे तो सेम है.
4: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
5: ओ हाँ, ये तो अलग है.
6: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
7: Beta, 95% aaye?
8: Haan, mummy.
7: Good. Ab chaliye, papa, aap apna report card dikhaiye.
9: Mera?
7: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, sare accounts updated?
9: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
10: क्रेविंग डिलीशियस इंडो चाइनीज एंड नॉर्थ इंडियन फूड? रेड हॉट चिली पेपर इज द प्लेस टू गो. विद लोकेशंस इन फ्रिस्को, मकीनी, रिचर्डसन एंड नाउ आवर न्यूएस्ट लोकेशन इन एलन एट वाटर्स एंड 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
11: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है. चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
12: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
11: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
6: Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
13: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
14: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
13: कैसे?
14: पेज 3 ईटरी?
13: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
14: डूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोल्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
13: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
15: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
16: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
17: लिया.
16: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
17: नहीं आया.
16: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
18: Visit www.sanadainc.com today.
19: In today's busy world, when was the last time you truly paused and listened to yourself?
4: Rediscover peace at the Osho Meditation Retreat from July 31st to August 2nd at Osho Kevalya Dham in Denison, Texas. Experience dynamic and silent meditation, joyful music, celebration, and deep inner transformation with Swami Prem Maitreya. Whether you are new to meditation or have practiced for years, you are welcome. Limited seats are available. Register today by calling 214-395-6757 or visit oshouniversal.org.
0: If you are just joining us, do receive my very warm welcome to the show this morning as we get this week started for you.

0: I do have to interrupt this track because we have a small break coming up. Some messages from our advertisers. Please listen in carefully.
1: जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए
2: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर कोई बात नहीं पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग फाइब्रो स्कैन विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन
3: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे
4: यार बॉस ने फिर से डांट दिया ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस
5: अरे रिलैक्स यू नीड अ कूल थेरेपी
4: थेरेपी वो तो बहुत महंगी है
5: नहीं कूल मतलब कूल चा थेरेपी
4: ये क्या होता
5: सिंपल चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन
2: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस
3: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन Available. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
6: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
3: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
6: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
3: Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar.
6: Call now 945-527-0897 or visit astrologer Ishwar.
7: com. यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार
8: तो चल उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं
7: What?
9: This friendship day bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
10: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
11: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
12: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
11: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
12: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाय सुपरहिट
13: तारा वो तारा हर तारा
8: अरे अरे अरे डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर होटल्स गैस स्टेशंस वेयरहाउसेस मेडिकल फैसिलिटीज रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 डेकेड्स कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे तारा कमर्शियल एनर्जी जो आपके बिजनेस को रोशन रखे
14: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूंगी
15: अरे मैडम करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या
16: अब करेगा बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन स्टनिंग लहंगास एलिगेंट साड़ीज ब्राइडल ज्वेलरी मेंस एंड किड्स वेयर
17: इतना सब और प्राइस
16: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन अब हर आउटफिट बोलेगा
18: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to FunAsia Radio.

0: I'm going to leave the studios, and I'm also going to leave my direct number here with you for you all to reach me after right now, after 10 o'clock. The number to call is 214-675-1754. 214-675-1754. And I'll take all comments, feedback, suggestions, or anything to do with the FunAsia Network, its advertising, or its programming. 214-675-1754. And that's my show for today. It is 10 o'clock.
1: This is the FunAsia Network. You are listening to FunAsia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by FunAsia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
4: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
5: जिंदगी एक रंगमंच है
6: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
7: कॉल 972-897-1530, firstunitedtexastitle.com.
8: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
9: Excuse me. It's called being loyal.
8: It's called being predictable.
9: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
8: And what's so special at Neon Cactus?
9: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
8: Not bad.
9: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
8: Okay, this I didn't expect from you.
9: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
10: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज, एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए FunAsia Radio के सोशल मीडिया पेजेस।
7: Chalk Talk Casino and Resort Durant, where unforgettable memories are made together. Must be 21 or older to participate. Terms and conditions apply. Please play responsibly.
11: Documents या पार्सल भेजनी है?
12: हाँ।
11: घर रिलोकेट करनी है?
12: हाँ।
11: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
12: हाँ भाई हाँ।
11: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
13: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. Sirf India nahi, USA aur duniya bhar mein trusted shipping aur moving services. SFL Worldwide, har move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
14: Kya matlab?
15: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
15: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
14: Ab to karna hi padega, madam.
16: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
17: For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner, Fun Asia Network.

0: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.
1: Hello, namaskar, and thank you very much for tuning in. This is Gapshup Gali with me too. और show शुरू करने के पहले जो शबनम जी को एक दिल से thank you कहना है, उसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं, let's go for it. A big shout out for her for an amazing show that she brings for all of us. Monday से आज से जो शुरू होता है, all the way till Friday, 7 से लेकर 10 बजे तक. और अभी हमारे स्टूडियो के घड़ी में बजे हैं 13 minutes past 10 by the studio clock. That it is time for me to start. It is 27th of July, Monday ka ye din. Main koi afsos nahi jatane wali hu yaar, Sunday ke baad Monday aana hi hai, hame pata hai. This is Gapshup Gali with me too.

As we get started with this 208th day of out of the 365 days of this year, ये है week 31st, ladies and gentlemen. कुल मिला के बात ये है कि 157 days that are left of this year. इसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा आप हमें भी देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार. थैंक यू फॉर गिविंग अस कंपनी राइट हियर ऑन फनी रेडियो 104.9 FM. कैन आई टेल यू कि आपकी चॉइस बहुत ही कमाल की है.

0: जिंदगी के कई रंग। फनीशा रेडियो के
1: मोमेंट्स डोंट फेड, दे एको लाइक अ मेलोडी दैट नेवर लीव्स यू, एंड इन दोस मोमेंट्स व्हाट यू वेयर बिकम्स अ पार्ट ऑफ दैट मेलोडी। वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलर्स विद ओवर 40 स्टोर्स इन इंडिया इज नाउ इन डेलिस। PMJ ज्वेलर्स, timeless craftsmanship, unmatched elegance and stunning bridal collections, now in Main Street Frisco. PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
2: Call 857-891-8942 today.
3: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
4: तो चल उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं।
3: व्हाट,
5: दिस फ्रेंडशिप डे ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज़्ज़ा किचन। पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, टैग फन पिज़्ज़ा किचन एंड एंजॉय 10% ऑफ योर बिल और अ फ्री गार्लिक ब्रेड। ऑफर वैलिड टिल ऑगस्ट 3rd। विजिट funpizzakitchen.com फॉर मोर डिटेल्स।
6: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
7: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
6: नहीं।
7: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
6: नहीं।
7: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
6: वो भी नहीं।
7: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
8: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी।
9: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
10: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
11: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
12: Calculating route. Rerouting.
11: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
12: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
11: क्यों?
12: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything देसी at India Bazaar in Fort Worth.
11: अच्छा तो सीधा वही ले चलो.
13: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
12: Your new destination has arrived.
14: भूख लगी, जोरों की भूख लगी.
15: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
16: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू. ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
15: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच ambience and an evening that just flows into the night. You don't go just anywhere. You go to Page 3, Hub 121 McKinney.
17: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.

0: You are tuned into Gupshup Gali with Meetho और हर मंडे को इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ते हैं हुसैन पंजवानी साहब फ्रॉम ड्रीम होम मॉर्गेज ही इज ऑन द एयर वेव्स एंड फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स यू विल गेट ऑल द टिप्स एंड एडवाइसेस दैट यू आर सीकिंग प्रॉबेबली और मैं शुरुआत में आपको बता दूं ड्रीम होम मॉर्गेज डॉट कॉम इनकी वेबसाइट है 972-245-5626 इनकी जो है इनका जो है नंबर है डू रिमेंबर दैट एंड यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन क्या है ना कि बिटवीन फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट्स क्रेजी हाउस डिमांड्स एंड दिस एंडलेस मेज ऑफ मॉर्गेज जागन हमें ना समझ ही नहीं आता कि करना क्या है कि एक मतलब एक अजीब सा एक रूबिक्स क्यूब टाइप का एक सिचुएशन होता है कि ये करें कि वो करें कौन सा कॉम्बिनेशन सही होगा ऑल ऑफ दैट हैपेंस बट व्हाट इफ यू हैड दिस वेटरन गाइड ऑन योर साइड जिनके पास डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोज टू 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस तो बात ही कुछ अलग हो जाती है राइट सो लेट्स गेट मिस्टर हुसैन पंजवानी ऑन द एयरवेव्स ऑफ फाइनेंशियल रेडियो एंड लेट्स टॉक अबाउट होम एंड कमर्शियल बिजनेस राइट हियर एंड फाइंड out about the various loans that they offer, all that they can help with and sara kuch from A to Z. Good morning, Hussain sahab. Kya hal chal hai aapke?
1: Good morning, Mintu ji. I'm doing great. I hope you are doing great. I hope all your listeners are doing great and had a well-rested weekend.
0: That is what we want to hear from our mortgage person, you know, ki agar dimaag thanda hai toh mere khayal se bahut achche se help kar paoge aap aur bhi zyada achche se. Let's put it that way.
1: मैम हमारी कम्युनिटी हमें हमेशा दिमाग ठंडा ही रखने पे मजबूर करती है तो इट्स
0: ग्रेट टू नो
1: दैट्स ऑलवेज गुड
0: Yeah, great to know that. So, baat karna chahungi the various things that always hovers in our mind when it comes to refinancing, when it comes to cash out, commercial loans or home mortgage ka jo bhi hai scenario. In sari cheezon ke baad bare mein ek karke let's talk about what's it.
1: 100% सबसे पहले आपने कैश आउट की बात की बाइंग की बात करी लैंड की बात करी लेकिन ये सब चीज में एक ही चीज कॉमन होती है इंटरेस्ट रेट्स सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इंटरेस्ट रेट्स क्या है सो अगर आप रीफाइनेंसिंग की बात कर रहे हो कैश आउट रीफाइनेंसिंग की सो आई फील रेट्स थोड़े एलिवेटेड है बट एटलीस्ट हम फ्राइडे और आज भी देख रहे कि बॉन्ड थोड़ा कम हुआ है कंपेयर टू व्हाट इट वाज लास्ट होल वीक लास्ट एंटायर वीक वी सॉ द बॉन्ड ऑलमोस्ट एज इट वाज अ टू ईयर हाई बट ऑन फ्राइडे एंड टुडे वी सॉ द बॉन्ड रिट्रैक्टिंग अ लिटिल बट सो दैट्स ऑलवेज गुड न्यूज कि जो सोच रहे हैं रीफाइनेंसिंग का जिनका रेट्स इन द हाई सेवन से स्पेशली हम जब कैश आउट की बात करते हैं सो मीटो वन थिंग आई वॉन्ट टू टॉक टू लिस्टनर्स के डोंट बहुत से लोग का ये है कि वो फाइनेंशियल क्रंच में है
0: okay?
1: बट उनका एक माइंड ब्लॉक है कि हमारा चार साल पहले हमने जो रेट लिया था वो 3% पे था या 3.5% पे था
0: right.
1: अभी हम रिफाइनेंस कराएंगे तो हमारा 6.5% हो जाएगा बट देन समटाइम्स यू हैव टू मेक अ डिसीशन यू नो हम टफ डिसीशन होता है कि वो हम ठीक है वो 3 लाख पे मेरा 3% रेट बढ़ जाता है ऑफकोर्स $400-500 मेरा 2.5-3 लाख की जो करंट बैलेंस है उस पर मेरा पेमेंट हाई हो जाता है बट हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट कैश आउट वो मुझे कैश करंट से कितना रिलीफ मिल सकता है बाय डूइंग द कैश आउट सो टू ऑल योर लिस्टर्स अगेन दिस इज नॉट अ बायस ओपिनियन बट अगेन आपकी अर्जेंसी पे डिपेंड होता है सो डोंट लेट दैट बी अ ब्लॉकेज फॉर यू मेरे पास काफी क्लाइंट्स आते हैं कि हुसैन हमने रिफाइनेंस नहीं करवाया क्योंकि हमारा रेट 3% था हमें पैसे की बहुत जरूरत थी वी वर बिहाइंड ऑन आवर वी वर रियली हैविंग कैश क्रंच बिकॉज वी हैड क्रेडिट कार्ड डेट्स वी हैड कार पेमेंट्स सम स्टूडेंट्स लोन टू पे बट बिकॉज वी हैड अ 3% रेट हम होम इक्विटी लोन किए हमारा रेट हमारा इंटरेस्ट हमारा क्रेडिट स्कोर कम था तो वी डिडंट गेट अ होम इक्विटी लोन नाउ वी हैव मिस्ड कपल ऑफ पेमेंट्स सो एट दैट टाइम देन आई कैन नॉट हेल्प यू सो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि यू नो यू नीड टू सिट डाउन एनालाइज योर फाइनेंसेस के कभी कभी हमें वो कड़वी गोली खाना पड़ता है यू नो टू सॉल्व द प्रॉब्लम बीमारी दूर करने के लिए कभी कभी कड़वी गोली खाना पड़ता है एंड एंड दैट्स एन एक्चुअल रियल एग्जाम्पल्स आई एम शेयरिंग विथ यू मीटू के दिल कम टू मी एंड दिल से यू नो हम अभी पेमेंट्स लेट हो गया And now you help us out. Now we are ready to refinance that 3% rate. At that time, I cannot help you because you are two payments behind or you missed a couple of credit card payments.
0: Right.
1: And your scores are now in the mid 500 or low 500. So cash out ke liye minimum you need 620 to 640 score. So anything, agar aapko koi doubt hai, anything jo hum dekh rahe lately, so you call us. Consultation is absolutely, absolutely free. And if you are a first time home buyer, ye time hum ulta kar rahe, pehle hum cash out ki baat ki, abhi hum purchase ki baat kar rahe.
0: Ji.
1: It is definitely, rates are high, we understand that, but it is a buyer's market.
0: Hmm.
1: So there, we have already seen movements as started, hum already dekh rahe ki activity shuru ho gayi hai. In fact, it started, I would say, late start in summer. But now we are seeing people are making deals, applying for loans, especially on first-time home buyers. And the new thing is, we have 4-4.5 lakh ghar, below $450,000 homes, $500,000 homes, usme kafi activities badi hui hai. So that's always a great sign. So again, agar aapko koi bhi question hai, you can always call us. You want to get pre-approved, you call us. Anything to do with refinancing, buying a house, commercial loan, jaisa main tumhe kaha, we do all kind of commercial loans. Cash out also on commercial loans, from development, from purchasing a land, developing the land and going vertical on the land, we can help you.
0: Perfect. And once again, I do want to let my listeners know, dreamhomemortgage.com is the website. Ye kaun nahi janta, lekin for those who have probably, they have come to US or Texas for the first time and haven't heard about you, which I'll be very, very surprised about. But yes, once again, dreamhomemortgage.com, 972-245-5626 is that number. They are a phone call away. Sachi mein sochi mat. Jo bhi soch rahe hain, maybe brainstorm with Mr. Hussain Panjwani and his team and figure out the road forward for you. So yahan pe hum kyunki baat kar rahe hain iski, to down payment assistance program ke bare mein bhi baat kar li thode se aap uska bhi details.
1: Definitely jo ab again abhi July ka mahina almost end khatam hone aaya hai,
0: correct,
1: as we approach September and October, agar there is up to $25,000 grant available for first time home buyers. So, iske liye, there are three requirements for the $25,000 grant. Of course, availability is always is going to, while supplies last, ka mujhe disclaimer dalna hi padta hai. But it's all public record. Aisa nahi ki it's a bait and switch. If the funds are available, we can show you on the website. Yes, it is available. If it is not available, it will become available October 1st. And I had clients last year also, last quarter also, where they started looking for homes mid of June, and then July 1st we had the contract approved, loan ready, so we could submit that application for them. So this is $25,000 grant me too for first time home buyers. Isme teen requirements hai ke, like I said, it has to be a primary residence, you have to be a first time home buyer, and the most important thing, jahan bahut se log nahi qualify hote unfortunately, is the entire household income, not just the borrower's income. The entire household income has to be below the median income of the county where you're buying the house. And of course, these all are public records. Aisa nahi ki hum dream home pe baith ke prefer karte hai, preference hota hai ki ye hamare janne wala, ye hamara favorite RJ hai, to inki loan approve kar de, ye hamara RJ nahi hai, to hum iski grant approve nahi karenge. I don't have that control. It's all black and white. So again, if you are a first time home buyer, again, let's say if you're a family of four, household income is below 75,000-78,000, then you have a very good chance of getting qualified in most of the counties in the DFW metroplex.
0: And how much time does it take to prepare to get to the cut? What is the application process? Wo sab time kitna lagta hai?
1: So, application, hum, jaisa hume application aata hai, we get the package ready within 48 hours.
0: Oh,
1: then we submitted another 48 hours and we get an answer within 5 to 6 working days. So at least at hamari end pe, hamari end pe, we get the whole package ready. We will know right away whether you qualify or not, within, not right away, like I said, within 3 to 4 days. But our income analysis to is done in last less than 48 hours. And then we submit the package for your grant. Lekin kabhi kabhi kya hota hai, jaisa hamare paas ek client the, they qualified, but they never found the house that they liked. Though they qualified, and then by the time they put a contract, the grant was already you know, there was no grant money available. So again, now they have to wait. They have to wait for the next quarter.
0: So Hussain Saab, this is a first come, first serve. It's not like a lottery system or anything, is it?
1: No, it's first come, first serve. The beauty is, it's all available. Aapko hum ek, there's a website. We show you that, hey, these are the funds available today. Achha. These will be the funds available 10th of August, 10th of July. You know, every day we can check if funds are available. Hmm. And once we submit the application and you are approved for the funds, even if your closing is 2 weeks later, that money is locked for you.
0: Amazing, yeah.
1: So that's the beauty of it.
0: Or somebody who has applied last quarter can apply again. So there is no restriction.
1: 100%. There's no restriction. If you, like this family, I know once they find the house that they really like, we'll be ready. But the thing is, two things, right? You have to get a person to manage it. And when your application is approved, then the funds are available.
0: Correct.
1: These two things are hand in hand. Yeah. But the beauty is people get those money all the time. And it's up to $25,000 free money.
0: Correct.
1: You know, it's no koi gimmick. It's nothing. It's very black and white. It's a great program. When I heard of this program like 7-8 years ago, I was like, it's too good to be true. And that time it was like, I think 5-7 years ago, it was 10,000. Then it went to 15, 20. And now it jumped up to 25,000.
0: It's an amazing, amazing option for our listeners. और मैंने जब भी आपसे इसके बारे में बात की, मुझे हमेशा ही लगा था कि you know, कुछ तो एक इसमें फाइन लाइन आएगा, कुछ तो हिडन बिहाइंड होगा, लेकिन आपकी बातों से पूरा कॉन्फिडेंस है. एंड जब भी आप ऑन एयर आते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टू हियर ऑल योर टिप्स एंड एडवाइस. वी हैव जस्ट 7 seconds टू गो. थैंक यू सो मच हुसैन साहब, इट इज़ ऑलवेज प्लेजर टू होस्ट यू.
1: Always a pleasure. Thank you.
2: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
3: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
4: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
5: यार, मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज हैं यार?
6: तो चल, उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं.
5: What?
7: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen, and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com.
8: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
9: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
8: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
9: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
8: सच में सब संभालेंगे?
9: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.

And that's the title of the film, Isak. This is Gapshap Gali with me too. और इस segment में कुछ ऐसे गाने लेकर आती हूँ जो इसी time frame में release हुई in cinema history. और इसीलिए ये गाना जो आपने सुना, it is a film which absolutely was disastrous at the box office. तो इतना बस जान लीजिए कि ये एक फिल्म थी जो रोमांटिक ड्रामा थी, प्लस एक्शन भी थी उसमें, और कुछ मॉडर्न अडेप्टेशन ऑफ रोमियो जूलियट था, और प्रतीक बब्बर थे इसमें. And I feel so bad. Pratik Babbar, son of Smita, the Smita Patil we are talking about. Unko wo mauka nahi mila, because I do think that he acts well. It's just that ki na wo right script hona ek actor ke liye bhi bahut zaruri hota hai. And the other part is also ki you should fit into the role well. Aur meri khayal se kuch yahi sari kamiyan thi is film mein. That is why people didn't connect to it. But yes, it dramatically underperformed at the box office. That's what I can tell you. Jo 26th of July, 2013 को रिलीज हुई थी. तो वहाँ से थोड़ा और आगे जाने वाली हूँ और एक और फ्लॉप फिल्म के बारे में बात करने वाली हूँ जो यू नो दो बहुत ही बढ़िया एक्टर्स के साथ बनाई गई थी. एक तो कृति सानन, जिनका आज बाय द वे हैप्पी वाला बर्थडे है, और दूसरे हैं हमारे अपने दिलजीत दोसांझ. फिल्म का नाम अर्जुन पटियाला, विच कुडंट डू एनीथिंग एट द बॉक्स ऑफिस, which released on 26th of July 2019.

Listen, it is Kirti Sanon's birthday, and it feels just right to play another song that she won the National Award for. क्या कहते हैं? वो परम सुंदरी तो हम कितनी बार सुनते रहते हैं. मैंने सोचा इस बारी why not we play this full झड़ियों song for all of you, and wishing Kirti Sanon a very, very, very happy birthday, and to everybody else celebrating their birthday. आपको भी यार ढेर सारी बधाइयाँ. जब तक आप बताओगे नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा यार. और डेडिकेशन या इस तरह की चीजों का वेट क्यों करना यार. अपने लिए गाना डेडिकेट करो और आपका बर्थडे है आप तो इंजॉय करो, फिर अगला भी करेगा आपके साथ, है ना. तो इसीलिए एक डेडिकेशन तो बनता है अपने लिए. दैट इज व्हाट आई विल से. 9722355555 स्टूडियो का नंबर है जस्ट इन केस आपने स्टोर नहीं किया हुआ है. ओके, आई डू वॉन्ट टू टेल यू ऑल दिस पार्ट ऑफ माई शो इज ब्रॉट टू यू बाई AG फिनटैक्स. And we are very proud about the fact that they are one of the fastest growing tax and accounting firms in the US. Zarur yaad rakhein ki inke saath aapko connect karna hai to find out more about, you know, financial and tax services that they provide for the dynamic business owners. वो चाहे बुक कीपिंग की बात हो, चाहे वो पेरोल अकाउंटिंग की बात हो, बैंक या क्रेडिट कार्ड रिकंसिलेशंस की बात हो, टू प्रोएक्टिव टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंप्लायंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज, दे हैव इट ऑल अंडर वन रूफ. आपको बस जाना है, एक्चुअली जाना भी नहीं है, फोन कॉल अवे दे दैट दे आर, फॉर विच आई मस्ट शेयर द फोन नंबर, राइट. द फोन नंबर है लेट्स गेट यू दैट 4699429888. agfintax.com इज द वेबसाइट दैट विल कीप योर फाइनेंसेस एब्सोल्युटली ऑर्गेनाइज, कंप्लायंट एंड फ्यूचर रेडी. थैंक यू वंस अगेन फॉर ट्यूनिंग इन टू फन एशिया रेडियो. दिस इज फुल झड़ियों विथ यू.

एंड दैट इज कृति सैनन. वी थॉट वील सेलिब्रेट. तो फोन आया कि भाई वाई नॉट परम सुंदरी ऑल्सो फ्रॉम द फिल्म मीमी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. आफ्टर ऑल जुलाई में ही रिलीज हुआ था ये फिल्म. लास्ट वीक ऑफ जुलाई दैट इट रिलीज एंड विच वॉज सपोज टू हिट द थिएटर्स, लेकिन पैंडेमिक की वजह से थिएटर्स तो नहीं, लेकिन सीधे नेटफ्लिक्स पे आई थी. एंड इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड एंड टॉक्ड अबाउट डिजिटल रिलीजेज ऑफ 2021, लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड दैट्स मीमी फॉर ऑल ऑफ यू. एंड पंकज त्रिपाठी और कृति सैनन दोनों को इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला था. क्या बात है यार, इस रोल के लिए अराउंड 33 pounds दैट शी हैड गेन. ये होती है कमिटमेंट, यू नो, एक्टर्स की, जो हमें दिखता नहीं है. एक्चुअली दिखता है, दिखा हमें.

0: मूवी दैट रिलीज इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई, और इसीलिए हमने इसका गाना भी सुनवा दिया. और वजह ये भी कि भाई आज है 36th बर्थडे ऑफ कृति सैनन, जो कि जिनकी जर्नी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर तक, एंटरप्रेन्योर, प्रोड्यूसर जो वो बन चुकी हैं, सच में एक टैलेंट, एक एम्बिशन और एक सेल्फ बिलीव की बात है. ये सेल्फ मेड स्टार हैं, और इसीलिए बहुत सारी शुभकामनाएं इनको हम भेजना चाहते हैं. एंड दैट्स कृति सैनन, लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड कुछ और फिल्में जो इसी टाइम फ्रेम में रिलीज हुई है ना, इसके ना अच्छे अच्छे से गाने हैं, और इसीलिए अगले सेगमेंट में वी विल डू दैट. हालांकि 11 टू 12 इट इज डेडिकेटेड टू सम नाइस टॉपिक दैट वी पिक अप टू टॉक अबाउट, तो वो सारा चलता रहेगा, लेकिन ये भी पैरेलली चलता रहेगा. इट इज ऑल अबाउट एक्स्ट्रा, एवरीथिंग एक्स्ट्रा दैट यू गेट ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM. बने रहे हमारे साथ, छोटे से ब्रेक पे जा रही हूँ, वापस आके बहुत सारी बातें हैं, आइएगा.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
4: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
3: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
4: वेट, व्हाट?
5: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
6: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
5: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
7: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग. फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
8: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
9: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
10: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
11: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
12: Yaar, mere phone mein hum dono ke kitne selfies hai yaar.
13: To chal, un selfies se pizzas khate hain.
12: What?
14: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
15: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
16: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
17: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं।
16: तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
18: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
17: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
19: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
20: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजरवे, सुइट 205, फ्रिस्को।
21: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
22: Tracks that put you on the right track.

ladies and gentlemen, this is a film that I'm sure many of you are aware of, Rampur Ka Lakshman. And it is Rekha and, of course, who else? Randhir Kapoor in this movie, right? And this film, which is known for its songs, we all are aware of the beautiful songs. Lead actor Randhir Kapoor famously recalled how meticulously, you know, Manmohan Desai, who was the director of the film, had emotional melodrama and action choreography ko jis tarah se shoot kiya tha. Aur ye wo film hai jisse Shatrughan Sinha ka jo image hai as powerhouse performer ye seamlessly samne aaya tha logon ke between those villainous shades and heroic lead roles that he did during that time. Rampur Ka Lakshman jo 1972 mein release hui thi आज ही के दिन, इसीलिए इतनी सारी बातें हो रही हैं इसके बारे में. बातें तो और भी होंगी और ये होगा मौसम के बारे में, कुछ वेदर अपडेट और वेदर के साथ रिलेटेड एक नाइस टिप दैट आई एम गोइंग टू गिव यू. अब क्या है ना कि इतनी सारे हमें ओवरलोड ऑफ ज्ञान मिलता है ना कि जहाँ पर हाइड्रेट योर सेल्फ एंड फलाना एंड ए ग्लासेस ऑफ वाटर, ये लूज कॉटन कपड़े पहनो, डोंट गो आउट इन द आफ्टरनून, ये सारी बातें ना पता है हमें, पता है. और ये चीज़ मैं भी करती हूँ. I am also guilty of doing that. जब भी मैं मौसम का हाल बताती हूँ और ऐसी हीट एडवाइजरी जो आज भी है बाय द वे, जब बताती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि पीपल हाइड्रेट, पीपल डोंट गो आउट इफ़ यू डोंट हैव टू, एज इफ मतलब मैं ना कहती तो ये लोग नहीं कर रहे होते हैं ना, आप लोग नहीं कर रहे होते. नहीं, तो ये बात ऐसी है कि सब जानते हैं, लेकिन ऐसी रेपिटेटिव एडवाइस नहीं, कुछ एक अलग एडवाइस देने वाली हूँ जो मेरे फीड पे आया, तो मैंने सोचा कि आपको फीड किया जाए. थोड़ी देर में बताने वाली हूँ वो एडवाइस, लेकिन उसके पहले ये अगला गाना भी जो मैं प्ले करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग. आई एब्सोल्युटली लव दीज ओल्ड ट्रैक्स एंड एज सून एज आई फाइंड इट वेयर आई हैव लाइंड इट अप फॉर यू, आई विल प्ले इट for you. अब रामपुर का लक्ष्मण जो कि 1972 में आई थी, तो 70s में ही रहने वाले हैं, क्योंकि आज के दिन एक और बड़ी बढ़िया सी फिल्म रिलीज हुई थी और जिसका नाम है अभिमान. लेडीज एंड जेंटलमैन, सो लेट्स गेट यू अभिमान, जो कि 1973 में रिलीज हुई थी, उसका ये गाना जिसमें अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर जो है उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है इन दिस कॉन्सर्ट परफॉर्मेंस इन द मूवी.

आज ही के दिन रिलीज हुई थी ये फिल्म जिसका नाम है अभिमान। कमाल की फिल्म है जो तब हिट हुई थी और अब कल्ट क्लासिक है। और अमिताभ बच्चन, जया बच्चन जो इस फिल्म में है, ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था, जो जाने जाते हैं कि वो फ्रीडम देते थे अपने एक्टर्स को कि अपने कपड़े वो पहने यू नो फिल्म्स में। एंड कुछ कपड़े शायद आप जो देखेंगे इस फिल्म में, ये उन्हीं के खुद के कपड़े थे। एंड दैट इज़ व्हाट द सिंप्लिसिटी ऑफ दोज टाइम्स वर, राइट। ये एक ऐसी कहानी विच पीपल से दैट यू नो र्यूमर्स ही हैं शायद, लेकिन लूजली कहीं तो इंस्पायर्ड थी ये रियल लाइफ डायनेमिक लेजेंडरी सितार माइस्ट्रो पंडित रविशंकर और उनकी फर्स्ट वाइफ अन्नपूर्णा देवी के साथ, वो जो ईगो क्लैश, बिकॉज व्हेन यू नो सिंगिंग करियर इस फिल्म में जैसे कि था स्टोरी की, वाइफ का जो सिंगिंग करियर है वो उसके उन्होंने उसका करियर जो है वो एक्लिप्स करता है हस्बैंड्स सिंगिंग करियर। तो वो जो ईगो क्लैश होता है, वो जो मेल ईगो हर्ट होता है, उसके बारे में कुछ था ये फिल्म। ब्यूटिफुली मेड फिल्म इफ यू हैवंट वॉच्ड इट रियली, या सो इट वाज अबाउट दैट। सो यस, कुछ ऐसी जो बातें हैं जो हम मूवी के साथ रिलेटेड लेकर आते हैं। और बहुत सारी और अलग अलग किस्म की जो हम बातें करते हैं उसमें ना हीट से रिलेटेड कुछ बात करनी थी। अब देखिए ना, वक्त नहीं है मेरे पास ज़्यादा कि मैं वो बात कर सकूँ, तो अगले सेगमेंट में करती हूँ। और आपको यहाँ पे एक और गाना आपके लिए लगाना चाहती हूँ, हालांकि बहुत थोड़ा सा ही प्ले कर पाऊंगी, बट इट इज़ सेलिब्रेटिंग रिंकी खन्ना, इट्स हर बर्थडे टुडे। इससे बेहतर गाना क्या ही मिलेगा।

0: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
1: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 थ्रू 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
2: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
3: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
4: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
3: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
5: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
6: इन प्लेनो।
5: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
2: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
7: क्या मतलब?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
9: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: It's true. हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
11: Beta, 95% aaye?
12: हाँ मम्मी।
11: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
13: मेरा?
11: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
13: वो
1: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintechs helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintechs.com. Call 972-618-8555. AG Fintechs, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
14: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
15: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
14: Jahan har flavor करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज।
15: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
16: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
17: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
18: Some journeys begin with silence and some begin with devotion. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.
19: More music, more magic, more musty. 104.9 FM.
6: 104.9 FM फनीशा रेडियो पे बहुत बहुत सारा वेलकम है. वार्म वेलकम कहना नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी वार्म है, उस पर थोड़ा सा और वार्म लगा दिया तो फिर भाई बहुत बहुत वार्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत बहुत वार्म है तो ये बहुत बहुत ज़्यादा वार्म हो जाएगा. No, seriously, this is Monday Hangover. This is called that. And you are listening to Phanisha Radio 104.9 FM. यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि भाई सीमा मेहता लॉ ऑफिसर्स के बारे में आपने सुना है. आप जानते हो ना कि इफ़ यू आर ऑन H1B, F1, L1 और एनी अदर नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, और अगर आपको US परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए, तो लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता कैन सर्टनली हेल्प यू इन वेज दैट यू कैन नॉट इमेजिन. आपके केस को पूरी तरह से समझ के वो आपके लिए एक्सक्लूसिवली कुछ रास्ता निकालेंगे. एंड दैट इज अटर्नी सीमा मेहता एंड हर एक्सपीरियंस टीम, दे स्पेशलाइज इन इमिग्रेशन लॉ. तो जरूर जाइएगा, EB-5 इन्वेस्टर वीजा हो या फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीजा, स्पर्म लेबर सर्टिफिकेशन या US सिटीजनशिप, इन मामलों में आपको कोई भी अगर हेल्प चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो जरूर एक ईमेल ड्रॉप करें उन्हें. इनमें ईमेल टू at info@seemamehtalawfirm.com. that's the email address that you must remember for the law offices of Seema Mehta. Thank you once again for tuning in. It is K.S. Chitra's birthday, so this segment jisme sare gaane unhi ke lagenge. To agar koi gaana aapke dimag mein aaye which is a Hindi song, we'll definitely play it for you. Amazing, amazing songs that we have in Bollywood as well. She turned 63 today. Nightingale of South India, that she is called. Her remarkable journey with amazing songs that she has given us. Wishing her a happy and blessed birthday.

SPB and KS Chitra, ladies and gentlemen, those Midas Touch voices that they are called, the golden voice that turned every song into an everlasting memory for sure. KS Chitra ji ka aaj birthday hai, to har gana KS Chitra ji ka definitely hone wala hai is segment mein. Aur saath mein bahut sari aur baaton mein, ye jo main aapko ek tip dene wali thi, jo pichle segment mein de nahi paai, and it is to do with hot weather. Yaar, kya garmi padi hai, honestly. Kahan kal tum kahan nikli thi? Haan, movie dekhne ke liye nikli thi, and then there was something, a party also that I had to go to. और उतना ही वक्त जो बाहर थी ना, जो मतलब समझ ले पार्किंग लॉट से अंदर जाने तक का वो जो था ना दिमाग, उसमें मेरा गर्म हो रहा था बिल्कुल. तो कुछ टिप जो मेरे फीड में आया, मुझे लगा कि आपको भी देना चाहिए, अदर देन द फैक्ट दैट हाइड्रेट हाइड्रेट हाइड्रेट की जो हम रट लगाए रहते हैं, उसके अलावा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स अगर कुछ टिप हो तो बताओ, ऐसी वाली बात थी. तो मैंने सोचा कि बताया जाए यार, आपको ये खास एडवाइस दी जाए यहाँ पर. और ये है द मेंथॉल स्प्रे ट्रिक. आपको पता है क्या इसके बारे में? आई एम श्योर कई लोगों को पता होगा, मुझे नहीं पता था और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, सो आई थॉट आई विल शेयर इट विथ ऑल ऑफ यू. अब क्या है ना कि अगर आप ऐसे रूम में मान लो फंसे हो, बाहर भी नहीं जाना पड़ा, वो भी एक इंसिडेंट हुआ सैटरडे को. हम वी वेंट टू द स्टैंड अप कॉमेडियन शो और वहाँ पे एसी नहीं काम कर रहा था. यार, हाउ इज़ इट पॉसिबल? यार, कैसे हो सकता है कि इतने लोगों को आपने बुलाया नहीं, लेकिन आप बुलाया है और आपने एसी वैसी कुछ ऑन नहीं किया है या काम नहीं कर रहा है सही से? इट कैन बी सो सफोकेटिंग, माई गुडनेस. और सभी लोग कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन हम लोग हंस भी बहुत रहे थे, तो उस हंसी में मतलब वक्त कट गया, पता नहीं चला, ज्यादा बुरा नहीं लगा. लेकिन यस, अगर आप ऐसे किसी भी रूम में फंसे हैं जहां पे एसी ठीक से काम नहीं कर रहा हो, तो ये ट्रिक वहां पर भी काम कर सकती है. सो हियर इज दिस सुपर कूल ट्रिक. हाँ, आप क्या करोगे, एक छोटा सा स्प्रे बॉटल जो कि आप कैरी भी कर सको अपने साथ, ऐसा लो, उसमें पानी भरो एंड ऐड जस्ट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल, दैट्स ऑल यू हैव टू डू. और इसको अच्छे से फिर शेक कर लो एंड देन यूज इट ऑन योर आर्म्स, चेस्ट, ऑन नेक, एज पर योर रिक्वायरमेंट, है ना. तो उससे क्या होगा, बेसिकली पेपरमिंट कंटेन्स मेंथॉल, है ना, विच बाइंड्स डिरेक्टली टू द कोल्ड रिसेप्टर्स इन योर स्किन. थोड़ा सा वो जो एक टिंगलिंग कोल्ड इफेक्ट जैसा आप जो फील करोगे ना, तो यही इन रिसेप्टर्स को मिलने वाला है. ये एक चिली सिग्नल जो ब्रेन को पहुंचाएगा एंड योर जॉब इज डन. रूम का टेम्परेचर चाहे जैसा भी होगा, आप दिमाग आपका सोचेगा कि यार इट्स क्वाइट मस्त, काफ़ी ठंडा है, यू नो. तो ये बेसिकली फूलिंग योर दिमाग अ लिटिल बिट हियर, बट इट क्रिएट्स अ लॉन्ग लास्टिंग डीप कूलिंग सेंसेशन ऑन योर स्किन यूजिंग दिस प्योर न्यूरोलॉजिकल इल्यूजन दैट इज क्रिएटेड बाय दिस स्प्रे. ज़रूर याद रखिएगा और अगर इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूर बताइएगा भी. यार, यू आर लिसनिंग टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM, जहाँ पर हम ऐसी बहुत सारी लिटरली कूल बातें लेकर आते हैं आप लोगों के लिए. दिस इज़ गपशप गली विथ मी टू, celebrating KS Chitra, ladies and gentlemen. And once again, SPB, SP Balasubramaniam. Kya awaaz thi unki.

वी आर सेलिब्रेटिंग के एस चित्रा इन दिस सेगमेंट. उनका आज 63rd बर्थडे है. इन्यूमरस अवार्ड्स इनको जो मिले हैं, जिसमें नेशनल अवार्ड्स भी कई सारे मिले हैं. लेट्स नॉट फॉरगेट पद्मश्री दैट शी गॉट इन 2005 एंड पद्म भूषण दैट शी गॉट इन 2021. बहुत ही सिंपल हस्ती हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेड हस्ती हैं इन द इंडस्ट्री, एंड दैट्स के एस चित्रा. एक और एसपीबी, वो भी हमारे बहुत चहेते हैं. एसपीबी और साथ में चित्रा जी का कॉम्बिनेशन दैट वी हैव हैड इन बॉलीवुड फॉर सो मेनी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. उनमें से एक और बहुत ही पॉपुलर गाना विच इज कमिंग अप फॉर यू नेक्स्ट राइट आफ्टर आई टॉक अबाउट द स्पाइसी फूड पैराडॉक्स एंड वॉट इट इज. ये बताने वाली हूँ क्योंकि धूप से या गर्मी से, मुझे बोलना चाहिए धूप से नहीं एक्चुअली, गर्मी से परेशान जो टेक्सस है उनके लिए हाइड्रेशन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं. यहाँ कपड़े कॉटन के पहनने के अलावा भी बहुत सारी टिप्स हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स हैं, और वैसे ही कुछ बताने वाली हूँ. सुनने में थोड़ा सा अजीब और गरीब लगेगा शायद आपको, पर गर्मी में थोड़ा तीखा खा लो, गर्म चाय पी लो. यू नो नाउ दिस साउंड्स कम्प्लीटली काउंटर इंट्यूटिव, बट हियर मी आउट. ठीक है, लुक एट ट्रेडिशनल डाइट्स जो कि सुपर हॉट प्लेसेस के होते हैं, जैसे कि मेक्सिको ले लीजिए या हमारे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का ले लीजिए, पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, पार्ट्स ऑफ मिडल ईस्ट. इनके खाने में भर भर के स्पाइसेस होते हैं क्योंकि इससे गस्टेटोरी स्वेटिंग ट्रिगर होता है अपेरेंटली. So, capsaicin, yes, that is what it is called. It is in spicy food that tricks brain's internal thermostat into thinking you are warmer, causing you to sweat slightly. Aur Texas ke dry heat mein jab wo sweat evaporate hota hai, to guess what? Ekdam natural AC wali cooling effect aati hai. Ab jab humidity rahegi, tab ye cheez apply nahi hota hai, of course. Lekin baki jab dry Texas weather ki baat ho, to yes, it absolutely applies. Zaroor try kijiyega, aur agar kaam kar jaye, to is अदना को याद भी कीजिएगा. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

0: celebrating K.S. Chitra through her beautiful songs that we have in Bollywood. लेकिन Bollywood के बाहर भी हमारे पास एक बहुत खूबसूरत गाना है और इस गाने के साथ एक giveaway है कि K.S. Chitra के साथ जो आवाज़ है वो किन की है. पहले तो देखिए मैं कंपोजर की बात करने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं कुछ ज़्यादा टफ हो जाएगा. तो आप मुझे ये बता दो कि K.S. Chitra के साथ इस गाने में आवाज़ किसकी, और आप फूडिस्तान के अंदर जो डी वाइव रेस्टोरेंट है ना, दैट अपस्केल इंडियन रेस्टोरेंट दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट, वहाँ से आपके लिए एक फ्री आइटम जो आपको मिलने वाला है. एक्चुअली फ्री नहीं है, मेहनत करवा रहे हैं हम आपसे. 9722355555 स्टूडियो का नाम है. फूडिस्तान के अंदर आपको ये जो ये जगह मिलेगी वो बहुत कमाल की है. एंड लेट मी टेल यू ऑल्सो कि फूडिस्तान जहाँ पे आपको हलाल मीट मिल जाएगा, ग्रोसरीज, फ्रेश प्रोड्यूस, बेकरी आइटम्स, लाइव पानी पूरी जो स्टेशन है, उसके अलावा यार गन्ने के जूस का भी स्टेशन होगा इनके पास. तो ये सारी चीज़ें हैं. इसके अलावा फूडिस्तान में आपके लिए है फूडिस्तान से प्राइस मैच गारंटी ऑन ग्रोसरीज, और साथ ही साथ फ्री डिलीवरी टू एनी ऑर्डर दैट यू माइट हैव. जस्ट मेक श्योर कि $30 से ज़्यादा हो तो फिर 5 माइल के रेडियस के अंदर अंदर आपकी डिलीवरी एब्सोल्युटली फ्री. और अभी फिलहाल एक फ्री डिश फ्रॉम डी वाइव रेस्टोरेंट विच इज़ इनसाइड फूडिस्तान दैट यू कैन गेट. गेस द सिंगर अलॉन्ग विथ के एस चित्रा. अब ना ये फ़ोन पहले ही आ रहा है, मैंने गाना भी नहीं लगाया है. यू आर लाइव ऑन एयर. Hey RK, do you know which song I'm going to play?
1: You played the song, right? And asked the question.
0: No. मुझे वही लगा कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि मैं जो गाना लगाने वाली हूँ उन उसके साथ जो आवाज है, K.S. Chitra जी के साथ जो आवाज है वो आपको गेस करना है. ठीक है RK, कॉल मी बैक.
1: All right. If you'd have given me, I would have given it to somebody else.
0: Oh really? नहीं, हमें चाहिए कि जो वो लें क्योंकि हम चाहते हैं कि वो खुशी हमें मिले कि यार हमने इन्होंने बताया और हमने दिया, यू नो.

ठंडी में पसीना चले, ये जो था ना, अब हम गर्मी में पसीने को इनवाइट कर रहे हैं. ये जो स्वेट पैराडॉक्स के बारे में बात की थी पिछले सेगमेंट में, इट इज़ टू डू विथ दैट ईटिंग स्पाइसी स्टफ कैन हेल्प एक्चुअली कूल डाउन और टेल योर ब्रेन टू स्वेट अ लिटिल मोर, कि आप फिर वो क्या स्वेट इवेपोरेशन के जरिए आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन हो. एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट थिंग कॉल कैप्सेसिन, जो कि आपके एक केमिकल कंपाउंड मिलता है चिली पेपर्स में, दैट क्रिएट्स ए हॉट बर्निंग एंड स्पाइसी टेस्ट. और वो एक डिफेंस मैकेनिज्म के तरह काम करता है. जब वो हीट रिसेप्टर्स हमारे हीट रिसेप्टर्स तक वो स्पाइस लेवल पहुंचती है, तो स्वेट करने लगता है, बॉडी का थर्मोस्टैट बदल जाता है उसके बाद. ऑल ऑफ दैट राइट. अब मैं आपको जो ये ट्रिक बताने वाली हूँ, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू रियली. अगर आप US में नए नए आए हैं तो ये शायद आपको नहीं पता हो कि मैं ये कहूँगी. सबसे पहले तो भाई ध्यान से देखो आगे. जी हाँ, सामने देखिए. आप अगर आप घर के बाहर हैं तो रास्ता देखिए, और घर में हैं तो सीलिंग फैन को देखिए, और सीलिंग फैन के जो ब्लेड्स हैं उसको ध्यान से देखिए. ध्यान से देखिए कि उन पर एक स्पेसिफिक टिल्ट होता है, एंड दैट लिटिल एंगल इज अ कंप्लीट गेम चेंजर फॉर योर होम्स क्लाइमेट कंट्रोल. एक टॉगल स्विच है मोटर बॉडी पे. अगर गर्मियों में अगर आपने अपने फैन को काउंटर क्लॉकवाइज रखा, मीडियम टू हाई स्पीड, वट एवर यू चूज टू, और वो जो टिल्ट है उसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग डाउन ड्राफ्ट सीधे नीचे आता है, क्रिएटिंग अ विंड चिल इफेक्ट दैट इवेपोरेट्स मॉइस्चर ऑन योर स्किन टू मेक इट फील अ बिट कूलर. और इस तरह से आपके एसी का बिल भी थोड़ी सी उसमें बचत हो सकती है. यस, थैंक यू इफ यू डिडंट नो अबाउट इट. और विंटर्स में आपको क्या करना है, इसी स्विच को टॉगल करना है फिर से, एंड इट शुड स्पिन क्लॉकवाइज. योर फैन शुड स्पिन क्लॉकवाइज ऑन अ लो स्पीड बिकॉज वार्म एयर नेचुरली फ्लोट्स टू द सीलिंग, क्रिएटिंग एन अपड्राफ्ट सर्कुलेशन दैट पुल्स एयर अप, फोर्सिंग दैट ट्रैप्ड हीट और आउटवर्ड एंड जेंटली रीडिस्ट्रीब्यूट्स इट डाउन द वॉल्स बैक इन टू योर स्पेस विदाउट क्रिएटिंग ए चिली ड्राफ्ट. जी हाँ, अगर आपको इस टॉगल स्विच के बारे में नहीं पता था तो जी बहुत बहुत शुक्रिया. आई विल टेक योर थैंक्स फॉर दैट, एंड आई विल से नो मेंशन, डू नॉट मेंशन प्लीज. क्योंकि क्या है ना कि इंडिया पाकिस्तान में हमारे सीलिंग फैंस में ये स्विच नहीं होता, तो कई लोगों को नहीं पता होता है जो नए नए यूएस में आए होते हैं. स्टैंडर्ड सीलिंग फैंस इन इंडिया सिंगल डायरेक्शन पावर हाउस इज डिजाइंड एक्सप्लिसिटली टू मूव मैसिव वॉल्यूम्स ऑफ एयर डाउनवर्ड एट द डिजायर्ड स्पीड टू फाइट इंटेंस ट्रॉपिकल समर हीट. और वो रिवर्सिबल मोटर स्विच मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ा देता है, इसलिए ये फीचर लार्जली अनयूज्ड या रहता ही नहीं है हमारे सीलिंग फैंस पे बैक इन इंडिया और पाकिस्तान. तो मैंने सोचा चलते चलते गर्मी की बात हो रही है तो ये भी ज़रूर बताते जाऊँ आप लोगों को. राइट हियर, अभी फ़िलहाल ठंडा करने के लिए टिप टिप थोड़ा सा पानी बरसा दें.

By the way, in the original song, we know that Akshay Kumar aur saath mein Raveena Tandon thi, right? Aur Raveena Tandon ko apparently bukhar tha is gaane ko shoot karte waqt. Matlab jo itna romantic on screen lag raha tha, utni kuch romantic halat thi nahi waise, matlab real life mein. Bahut bukhar tha unko aur usi mein unhone shoot carry on kiya. And that is what is so special of, about such dedicated, you know, actors. जिनमें एक और नाम लेना चाहती हूँ जो है एक्टर कम डांसर कम डायरेक्टर कम प्रोड्यूसर, दैट्स प्रभु देवा, जो कि आने वाले हैं यहाँ और 1 अगस्त को ये जो होने वाला है द टेक्सस ट्रस्ट सीयू थिएटर इन ग्रैंड प्रेरी, रेस्ट श्योर उसके बाद डैलस का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाने वाला है. You have to buy your tickets very, very quickly. It's going really fast. Remember that, you know, social media pages pe jaakar aap khareed sakte ho, hamare pin post pe bilkul top pe milega Prabhu Deva live concert ke liye tickets ka, you know, you can buy it right there and you can do it on our social media pages, Fun Asia. Remember that. Media partner Fun Asia Network, Mathangi Entertainment Group लेकर आ रहे हैं प्रभु देवा एंड हिज टीम, लॉरेन गॉटली एंड सोनल के साथ साथ अलेक्जेंडर नोएल, हरिनी, नताशा शेरपा एंड सानवे मेघना. दे ऑल आर कमिंग टू गिव यू दैट पैन इंडियन डांस कॉन्सर्ट, दैट अल्टीमेट कॉन्सर्ट दैट यू गोइंग टू विटनेस हियर. क्या आप जानते हैं वैसे कि मैं बता रही हूँ ना, ऐसे कंडीशंस में ये ऐसे डेडिकेटेड लोग काम करते हैं कि मुकाबला गाना जो आपने सुना होगा ना, मुकाबला गाने के वक्त एक्चुअली इनका लिगमेंट टियर था प्रभु देवा का ऑन हिज लेफ्ट फुट एंड ही स्टिल वेंट ऑन परफॉर्मिंग. कैन यू इमेजिन क्या दर्द होता है यार लिगमेंट टियर का, कैसे मैनेज किया होगा भगवान ही जाने सीरियसली. बट दैट्स द थिंग अबाउट ग्रेट एक्टर्स एंड सेलिब्रिटीज एंड आर्टिस्ट एंड पीपल हु आर कमिटेड फॉर देयर वर्क एंड देयर पैशन. यू आर लिसनिंग टू Fun Asia रेडियो 104.9 FM. अगले गाने के साथ एक गिव अवे है, अगर आप सिंगर का नाम बताते हो, गिव अवे का नाम गाने के बाद बताऊं.

काश ये ऐसी छमछमाती हुई बारिश होती तो आज हीट एडवाइजरी का भी कुछ और किस्सा होता, क्योंकि 8 बजे तक हीट एडवाइजरी है. द टेम्परेचर इज गोइंग टू बी इन ट्रिपल डिजिट्स, बट इट्स गोइंग टू फील वे हायर, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट. दिस एंटायर वीक इट्स गोइंग टू बी समवॉट सिमिलर, एंड हमारा हीट इंडेक्स जो है वेंसडे थर्सडे को और बढ़ेगा ही, कुछ कमेगा नहीं. सो दैट्स वॉट इज इन स्टोर फॉर अस. एंड एक वीक फ्रंट आ रहा है जो कि हमारे टेम्परेचर्स को थोड़ा ड्रॉप कर सकता है, एंड दैट इज टूवर्ड्स द वीकेंड लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसकी हमें बड़ी खुशी है. और जो आ रहा है वो कितना इफेक्टिव होगा ये थोड़े वीकेंड के आसपास आए तो बताते हैं. अभी तो बस यार हफ्ता शुरू ही हुआ है, बहुत सारा किस्सा बाकी है, बहुत कहानी बाकी है. एंड टॉकिंग अबाउट गर्मी, लेट मी टेल यू ऑल, गर्मी से सिर्फ हम ही परेशान नहीं है, यानी कि डैलस ही केवल परेशान नहीं है, पार्ट्स ऑफ कैलिफोर्निया, एरिजोना आर ऑल्सो बर्निंग अप, एंड US के अलावा पार्ट्स इन इंडिया, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट और जापान, लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्मी से ये बहुत परेशान है. और जापान में हालत तो इतनी टाइट है दैट दे लिटरली हैड टू अपग्रेड देयर डिक्शनरी, विच हैपेंड वेरी रिसेंटली. क्या है ना कि जापान के हीट स्केल को पहले तो समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इट हैज़ बीन इवॉल्विंग अलॉन्ग साइड ग्लोबल टेम्परेचर्स फॉर डेकेड्स. और ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ इनके भी टेम्परेचर्स बढ़ गए हैं, यू नो इनके भी नॉर्मल एवरेज ये सारा कुछ बढ़ चुका है. बताती हूँ आपको थोड़े से और डिटेल में. तो फर्स्ट आप नात्सुबी मीनिंग समर डे यूज व्हेनेवर द मर्क्यूरी टच ए प्लेजेंट 77 डिग्री फ़ारेनहाइट. फिर थोड़ी सी और गर्मी जब अगर बढ़ी है तो इनके लिए एक और वर्ड था मनत्सुबी यानी कि मिड समर डे, जिसे 86 डिग्री के अगर आसपास टेम्परेचर अगर होता था तो उसे कहा जाता था मनत्सुबी. बट देन केम द 2000s एंड ग्लोबल वार्मिंग एंटर्ड द चैट. 2007 तक आते आते ये पुराने वर्ड्स किसी भी काम के नहीं रह गए थे. तो टेम्परेचर्स केप्ट रीचिंग यू नो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो मीटियोलॉजिस्ट ऑफिशियली रोल्ड आउट ए ब्रांड न्यू टर्म मोशोबी, एक्सट्रीमली हॉट डे, जिसका मतलब था ऑलराइट. ऑलमोस्ट 20 साल तक वही गर्मी का सबसे हाई वार्निंग लेवल रहा. मोशोबी बोलने का मतलब था कि यार बहुत तगड़ी गर्मी है. The weather agency held a massive national poll after April 26th. तो जी हाँ, अब इस साल की बात कर लेते हैं. After shattering records with the hottest summers ever recorded, 95 degree Fahrenheit started feeling normal. तो ये जो weather agency है उनके, उन्होंने एक massive national poll किया with nearly half a million citizens to vote on a word for a terrifying new realities, days hitting 104 degree Fahrenheit or higher. Weather agency ने एक massive इस poll में लोगों से पूछा कि यार बताओ क्या word रखें, क्या नाम रखें इसका, और winner था कुकुशाबी. देख सुनने में जितना क्यूट है तो वो था नहीं, इट मेंट लिटरली अगर ट्रांसलेट किया जाए तो जापानीज लैंग्वेज में इट मीन्स क्रूअली हॉट डे. एंड just days ago in July 2026, few cities officially logged the country's first ever Kokushobi days in action. Kokushobi तो हमारे हर समर में आता है यार. मैं सोच रही हूँ कि अगर हमें अगर देसी स्टाइल में इसका नाम रखना होता Kokushobi के जगह हमारा क्या नाम होता. मेरे दिमाग में आया तंदूर, मेरे दिमाग में आया भट्टी, मेरे दिमाग में आया भेजा फ्राई, जहन्नुम, ये सारे वर्ड्स मुझे याद आए. और मुझे याद आ रहा है तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट इन गार्लिन. लेडीज एंड जेंटलमैन, यू हैव टू चेक आउट. ऑलराइट, मोनाली ठाकुर इज द नेम ऑफ द सिंगर जो कि इस गाने को जिन्होंने गाया था. और छम छम इस गाने के लिए हमारे विनर हैं मिहिर साहब. बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ. रेड हॉट चिली पेपर की तरफ से इनको मिलता है एक कमाल का तोहफा, एंड दैट तोहफा इज ड्राई चिली चिकन या बेबी कॉर्न. एक और मोनाली ठाकुर एंड मीट ब्रदर्स अनजान का कमाल का कोलैब.

0: That's pretty much all the time I have with you all. Mulaqat hogi theek 10 baje kal with lots of new information and lots of love from me to you. This is Me Too signing off.
1: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
2: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
4: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
5: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
4: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
5: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
4: ये क्या होता?
5: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
6: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
7: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
8: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
9: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
8: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
9: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
8: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
9: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
8: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
10: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
11: तो चल उन सेल्फीज से पिज्जास खाते हैं।
10: What?
12: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
11: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
13: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
14: लिया।
13: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
14: नहीं आया।
13: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772। That's 972-863-772.
6: Visit www.senadainc.com today.
15: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
16: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
16: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
15: सच में? सब संभालेंगे?
16: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

आफ्टरनून अड्डा चल रहा है और मैं हूँ आरजे स्निगी। वैसे बॉलीवुड की एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, हर जनरेशन का अपना क्रश होता है, किसी के लिए शाहरुख खान, किसी के लिए रणबीर कपूर। और अब नए स्टार्स भी अपने फ़ैन फॉलोइंग बनाए रहे, लाइक अहान पांडे, अनीत पाडा। सयारा मूवी, व्हाट अ वंडरफुल मूवी इट वाज, एंड द स्क्रीन प्रेजेंस उसकी तो बात ही अलग है। अच्छा बताइए, अगर आपको एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ अगर लंच करना चाहिए या चांस मिले तो कौन होगा? मैं तो पहले उनसे पूछूंगी सेट का सबसे फनी इंसान कौन है, बिकॉज द गॉसिप्स ही होते हैं जो हमें ज़्यादा सुनने में अच्छा भी लगता है। फिलहाल म्यूजिक कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट ट्रैक फॉर यू ऑल।

को समझने के लिए वक्त देना ज़रूरी है। यहाँ आप सिर्फ एक पेशेंट नहीं बल्कि परिवार की हिस्सा है। सिर्फ 30 मिनट में अपना एनुअल फिजिकल कंप्लीट करिए, साथ ही एंग्जाइटी केयर, अल्कोहल से जुड़ी लिवर कंसर्न्स के लिए फाइब्रोस्कैन, विटामिन B12 डेफिशिएंसी टेस्टिंग और कई ज़रूरी हेल्थ सर्विसेज की उपलब्ध भी है यहाँ पे। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, कॉल कीजिए 214-666-6259 टू पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर फॉर योर गुड हेल्थ बेनिफिट्स। एंड हियर यू गो फॉर द नेक्स्ट सॉन्ग एंड देन वी गो इनटू अ ब्रेक।

you're listening to Afternoon Ada with me, RJ Sniggy, on Phoneisha 104.9 FM. पर आज के बिजी लाइफस्टाइल में एक सवाल, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या वो आपको सच में पूरा वक्त देते हैं या सिर्फ 5 या 10 मिनट? पैशन प्राइमरी हेल्थ केयर में हर अपॉइंटमेंट के लिए रखा जाता है पूरे 30 मिनट, क्योंकि आपकी हेल्थ

0: You're listening to Phoenicia 104.9 FM. मैं हूँ आरजे स्निगी और चल रहा है हमारा आफ्टरनून अड्डा. वी आर गोइंग इनटू अ शॉर्ट ब्रेक और हमारे पास है नेक्स्ट सेगमेंट में गिव अवेज. एंड इफ यू हैव एनी सॉन्ग रिक्वेस्ट प्लीज कॉल इनटू आवर स्टूडियो. हम मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद. चलता रहेगा हमारी आफ्टरनून अदा. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड इफ यू हैव एनीथिंग टू शेयर प्लीज कॉल इन टू आवर स्टूडियो. एंड बिफोर वी गो इन टू ब्रेक देयर इज समथिंग आई नीड टू टेल यू गाइज. आई एम गोना टेल यू अबाउट अ ड्रीम होम मॉर्टगेज आफ्टर गोइंग इन टू अ शॉर्ट ब्रेक. सो कीप लिसनिंग टू अस.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
4: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 days a week. 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
5: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं front page पे रहूँ.
6: Front page का तो पता नहीं, पर तेरा page 3 में होना मेरी guarantee है.
5: कैसे?
6: Page 3 eatery?
5: No, not another restaurant again.
6: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
5: मतलब great food, great drinks, and great company. यानी कि मैं.
7: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
8: जिंदगी एक रंगमंच है
9: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल. असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो. पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल. हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ.
10: कॉल 972-897-1530 firstunitedtexastitle.com.
11: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
12: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
13: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
12: नहीं.
13: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
12: नहीं.
13: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
12: वो भी नहीं.
13: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
14: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG FinTax. Your growth, our strategy.
15: AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
16: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
17: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
18: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 Insurance Solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
10: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
19: Dallas ki dhadkan, 104.9 FM, Funisia Radio.

You're listening to Afternoon Adda on Phoenicia 104.9 with me, RJ Sniggy. अगर आप अभी भी ड्रीम होम के सपने देख रहे हैं तो अब उस सपने को रियलिटी बनाने की वक्त आ गया है. ड्रीम होम मॉर्टगेज के साथ 1998 से ड्रीम होम मॉर्टगेज हजारों फैमिलीज को उनके सपनों का घर दिलाने में मदद करते आ रहे हैं. चाहे आप पहली बार घर खरीद रहे हो या अगर आप घर अपग्रेड करना चाहते हो, रीफाइनेंस करवाना हो, इनकी एक्सपीरियंस टीम आपकी बजट और ज़रूरत के हिसाब से बेस्ट मॉर्टगेज ऑप्शंस ढूंढने में मदद करती है. और सबसे खास बात, ये सर्विस पूरे 50 स्टेट्स में अवेलेबल है. तो अपने ड्रीम होम की जर्नी आज ही शुरू कीजिए. कॉल करिए 972-245-5626 या विजिट कीजिए dreamhomemortgage.com. ड्रीम होम मॉर्टगेज, मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन. हियर यू गो ऑन आवर नेक्स्ट ट्रैक्स.

Phoenicia 104.9 FM पर afternoon अड्डा की मजा चल रही है। आजकल एक ट्रेंड बड़ा ट्रेंडिंग है। पहले लोग मूवी देखकर डायलॉग याद रखते थे, अब इंस्टाग्राम के रील देखकर मूवी देखने के लिए जाते हैं। कभी एक डांस स्टेप वायरल, कभी एक डायलॉग, कभी सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक। सोशल मीडिया का भी बॉलीवुड में कैमियो रोल चल रहा है। लेकिन एक बात तो है, चाहे थिएटर हो या OTT, स्टोरी अच्छी लगी तो दिल जीती लेती है। तो अगर आप अभी ऑफिस से घर जा रहे हैं, लंच के बाद थोड़ी नींद आ रही है, बस कॉफ़ी सिप कर रहे हैं, स्टे विथ मी। अब सुनते हैं नेक्स्ट अमेजिंग ट्रैक्स।

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाय सुपरहिट
4: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग फोकस डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स स्ट्रक्चर्ड कोचिंग एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव
5: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331 99.
4: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
10: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है
11: हाँ
10: घर रिलोकेट करनी है
11: हाँ
10: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है
11: हाँ भाई हाँ
10: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है SFL Worldwide को कॉल कर
5: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. Sif India nahi, USA aur duniya bhar mein trusted shipping aur moving services. SFL Worldwide, har move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
12: Kya matlab?
13: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
13: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: Ab to karna hi padega, madam.
5: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.
15: You're listening to Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, on Fanesha 104.9 FM. Per. So now, welcome to the URA Debt Relief segment. Today, we have the pleasure of having URA Debt Relief Organization representative, Mr. Aman. He's going to tell us about URA Debt Relief Program. Hi, Mr. Aman. Hello. Hello.
16: Yeah, hello.
15: Yep. Thank you for joining us on 104.9 FM Fun Asia Radio. How are you doing, sir?
1: यस फनीशिया सुनने वाले सभी लिसनर्स को अमन और उरा की तरफ से नमस्कार. महीना खत्म होने वाला है, अच्छे अच्छे गानों के साथ आपके मनी सेविंग के टिप्स भी देते हुए चलें. ड्राइव कर रहे हैं तो फोकस कीजिए ड्राइविंग पर, और लेकिन ध्यान दीजिए इधर, क्योंकि अगला महीना जब आएगा तो वो गलती प्लीज मत दोहराइएगा जो पिछले महीने की थी. क्या कि क्रेडिट कार्ड की बिना स्टेटमेंट पढ़े आपने मिनिमम पेमेंट स्केड्यूल कर दी और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते जा रहे हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड है वो मान ही नहीं रहे कि हम तो उतरे ही नहीं, क्योंकि 40% इंटरेस्ट लेने वाले आपका क्रेडिट कार्ड क्यों उतारेंगे. 40% इंटरेस्ट आप हर महीने क्रेडिट कार्ड का पे करते हैं और फिर आप सोचते हैं कि उतर क्यों नहीं रहे हैं. ये एक ऐसा फंदा है जो फंस चुका है, लेकिन इसको निकाला जा सकता है, इसको माफ किया जा सकता है अगर आप चाहते हैं क्रेडिट कार्ड का कर्जा आधे से ज्यादा माफ हो जाए. जी हाँ, सही सुना, माफ हो जाए. जो आपने खर्चा है ना उसमें से आधा कर्जा माफ हो जाएगा और जो बाकी बचेगा आधा उसकी आसान सी वो भी इंटरेस्ट फ्री किस्तें बना दी जाएंगी. एग्जैक्टली. सो अगर आप चाहते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड का कर्जा, क्रेडिट कार्ड पर्सनल हो, बिजनेस हो, स्टोर के कार्ड हो, आपके या वाइफ के या बच्चों के किसी के भी कर्ज हो सकते हैं, उनका आधे से ज्यादा अगर कर्जा आप माफ करवाना चाहते हैं तो जस्ट कॉल पूरा. पूरा आपके क्रेडिट कार्ड का कर्जा आधे से ज्यादा माफ करवा देगा, आधे की इंटरेस्ट फ्री पेमेंट बना देगा. ना सिर्फ ये क्रेडिट कार्ड बल्कि आपका जो पर्सनल लोन है, गाड़ी का लोन, जो गाड़ी रीपोजेस हो गई है, जो आपके पास है, एंजॉय कीजिए, ड्राइव कीजिए, लेकिन जो गाड़ी बैंक उठाकर ले गया या गाड़ी जो टोटल हो गई किसी कारणवश, उसको भी अगर आप आधे से ज्यादा कर्जा माफ करवाना चाहते हैं तो आप पूरा को कॉल कर सकते हैं. हमारा टोल फ्री नंबर नोट कीजिए, 1-888-888-9914, 1-888-888-9914. या फिर आप अपने दोस्त अमन यानी मुझसे बात कर सकते हैं. मेरा डायरेक्ट नंबर है 9167763555, 9167763555, 9167763555. और हमारी वेबसाइट है www.ura.org. तो फिर मिनिमम पेमेंट करने से पहले कॉल करना ना भूलिएगा, आधा कर्जा माफ.
15: थैंक यू सो मच अमन जी, हम आपसे अगले हफ्ते फिर बात करेंगे.
1: जी थैंक यू.

You're listening to Afternoon Ada on Phanisha 104.9 FM पर with me RJ Sniggy. So अगले गाना मैं बजा रही हूँ, ये गाना ध्यान से सुनिएगा because we have a giveaway after this one song.

You're listening to Phanisha 104.9 FM Afternoon Adda with me, RJ Sniggy. तो फ्रेंडशिप डे आने वाली है और फन पिज्जा किचन में एक ग्रेट डील है. आप अपने दोस्तों को लेके जाइए. देर आर डिलिशियस पिज्जाज लाइक आचारी पनीर, स्मोकी तंदूरी चिकन. आप सब अपने दोस्तों के साथ जाइए, अच्छी अच्छी सेल्फीज कीजिए और पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम एंड आप टैग कीजिए फन पिज्जा किचन को एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर बिल. व्हाट अ नाइस थिंग यार. बस जाओ और इंस्टाग्राम पे फ्लेक्स करो और गेट 10% ऑफ एंड अ फ्री गार्लिक ब्रेड टू. सो दिस फ्रेंडशिप डे स्पेशल ऑफर इज वैलिड ओनली अंटिल ऑगस्ट 3rd. सो डोंट मिस इट. लेके जाइए अपने दोस्तों को. एंड वी हैड अ क्वेश्चन जो मैंने गाने के पहले पूछा था कि हु इज द सिंगर ऑफ इट एंड वी इवन हैव द विनर. दैट इज मोनिका. मोनिका जी आप विनर हो चुके हैं एंड यू गेट अ $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन. थैंक यू एंड हियर यू गो फॉर आवर नेक्स्ट सॉन्ग.

You're listening to Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, on Phanisha 104.9 FM पर. So now is the time for a nice passion healthcare tip. क्या आपको पता है हमारी blood vessels ना उम्र के साथ कम flexible होते हैं. दोस्तों healthy blood vessels मतलब healthy circulations. जब हमारी blood vessels अच्छे से relax और expand करते हैं तब ब्लड स्मूथली बॉडी के हर कोने तक पहुंचता है. इसीलिए अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखिए, टोबैको से दूर रहिए और रोज़ थोड़ा एक्टिविटी ज़रूर कीजिए. छोटी छोटी हेल्दी हैबिट्स आजकल हमारी हेल्थ को बेटरमेंट की प्रॉमिस करते हैं और अपना आपका ख्याल रखना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. इट इज़ ऑलवेज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट ऑन योर हेल्थ, सो ऑलवेज बी passion about your health and follow our passion healthcare tips.

जो कंगना गाना बजाए उसने एक बात तो याद दिला दी है मुझे कि इंडियन ज्वेलरी का चार्म कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है, और जब बात हो खूबसूरत एलिगेंट और ट्रेडिशनल ज्वेलरी की तो नाम आता है श्री कृष्णा ज्वेलर्स का। यहाँ आपको मिलेंगे क्लासिक गोल्ड डिज़ाइन, डार्जलिंग डायमंड कलेक्शन, साथ ही रॉयल कुंदन और स्टनिंग पोल की ज्वेलरी जो हर खास मौके को यादगार बना देता है। और एक खुशखबरी, श्री कृष्णा ज्वेलर्स अब आपके स्वागत कर रही है अपनी न्यू लोकेशन पर इन फ्रिस्को, 13145 CU 220 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को, टेक्सास 75035। तो अगला स्पेशल ओकेशन यो हो या खुद को एक ब्यूटीफुल गिफ्ट देना है, एक बार जरूर विजिट कीजिएगा श्री कृष्णा ज्वेलर्स। दे आर सिंस ज्वेलरी फ्रॉम 1967 और खूबसूरत यादें बनाते रहिएगा। बिफोर वी गो इनटू अ ब्रेक, और एक गाना।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
4: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
5: Restaurant choose karna ho? Google reviews. Hotel book karna ho? Google reviews. Lekin bachcho ki doctor ki jab baat aaye, to ek hi review sabse important hota hai. Maa ka review.
4: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 थ्रू 2026. मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर. कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे.
6: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
7: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
6: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
7: वेट, व्हाट?
8: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
9: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
8: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799. दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
4: Are you tired of the same arguments, reactions, and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents, and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques, and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
10: यार, मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार.
8: तो चल उन सेल्फीज से पिज्जास खाते हैं.
10: व्हाट?
3: दिस फ्रेंडशिप डे ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज्जा किचन. पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, टैग फन पिज्जा किचन एंड एंजॉय 10% ऑफ योर बिल और अ फ्री गार्लिक ब्रेड. ऑफर वैलिड टिल ऑगस्ट 3rd. विजिट funpizzakitchen.com फॉर मोर डिटेल्स.
6: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम. ओके, नेम ऑफ द लॉयर?
11: उमर ख्वाजा.
12: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
13: इन टुडेज बिजी वर्ल्ड, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू ट्रूली पॉज्ड एंड लिसन्ड टू योरसेल्फ? Rediscover peace at the Osho Meditation Retreat from July 31st to August 2nd at Osho Kevalya Dham in Denison, Texas. Experience dynamic and silent meditation, joyful music, celebration, and deep inner transformation with Swami Prem Maitreya. Whether you are new to meditation or have practiced for years, you are welcome. Limited seats are available. Register today by calling 214-395-6757 or visit oshouniversal.org.
14: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Funisia Radio.

You're listening to Afternoon Ada on Funisha 104.9 FM, but or main hu aapki RJ Sniggy. So DFW, are you ready for the biggest dance celebration of the year? Kyunki aa rahe hai India ke one and only Michael Jackson, the legendary Prabhu Deva ji, live on stage, aur unke saath honge Lauren Gottlieb, Sonal Bahaduria, Alexander Noel, Harini Neelakantan, Natasha Sarfa, aur Sanvi Meghna, ek dhamakedar ultimate पैन इंडियन कॉन्सर्ट के लिए. तो अगर आप डांस, बॉलीवुड और ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंसेस के फ़ैन हैं तो इस इवेंट को बिल्कुल मिस मत कीजिए. मिलते हैं सैटरडे अगस्त 1st टेक्सास ट्रस्ट सीईयू थिएटर पर, ग्रैंड पेरी में है ये. अपनी टिकट्स बुक कीजिए ऑन 248-233-3828 पर कॉल करें. ये इवेंट लेकर आ रही है मातांगी एंटरटेनमेंट ग्रुप और इसकी प्राउड मीडिया पार्टनर है फनीशिया नेटवर्क. सो डैलस गेट रेडी. प्रभु देवा की कॉन्सर्ट, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. गेट योर टिकट्स गोइंग ऑन.

जी देखते देखते ही आफ्टरनून अड्डा अपने ऑलमोस्ट लास्ट आवर पे पहुंच चुका है. मैं हूँ आरजे स्निगी और थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर आफ्टरनून. मैं बजा रही हूँ नेक्स्ट गाना. ये गाना ध्यान से सुनिएगा बिकॉज वी हैव अ गिव अवे आफ्टर द सॉन्ग.

एंड वी हैव आर आंसर ऑलरेडी. इट्स नन अदर देन प्रियंका चोपड़ा. और गिव अवे था हमारे फ्लेवर लॉन्च की तरफ से, एंड द गिव अवे वॉज आइदर दाल मखनी और डाबा स्टाइल चिकन करी. एंड वी हैव अ विनर, दैट इज मिस शीना जी. थैंक यू सो मच. एंड फ्लेवर लॉन्च हैज़ वेरी वेरी यमी करीज गाइज. उसकी दाल मखनी, दावा स्टाइल चिकन करी, दे आर टू गुड. यू शुड गो एंड ट्राई इट. इट्स ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को. सो नेक्स्ट गाना आपके लिए.

और इसी के साथ आफ्टरनून अड्डा की आज का सफ़र यही तक है. मैं हूँ आरजे स्निग्धा, आपसे इजाज़त लेती हूँ और बाद में भी फनी शो 104.9 एफएम पर नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट चलता ही रहता है, तो सुनते रहिए फनी शो 104.9 एफएम. हम फिर कल मिलेंगे. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी गाइज़.

जी हाँ, प्रभु का नाम लेकर शो तो हमने शुरू कर दिया। ऊपर वाले का नाम लेकर हमेशा ही हर चीज का, वो कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स वाला आगाज होना चाहिए, लेकिन उसके साथ अगर आप कुछ खरीदने का, कोई जेवर खरीदने का कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको डेफिनेटली एक ऐसी जगह पे जाना जरूरी होता है जहाँ पे आपको ऑथेंटिक चीज मिले, अच्छी चीज मिले, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्पेंड सो मच मनी ऑन बाइंग दैट ज्वेलरी। सो दैट प्लेस इज मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, फ्रिस्को में प्रेस्टन रोड पे लोकेटेड है जी। ये वो जगह है जहाँ आपको मिलेंगे स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी। एलिगेंट होती है, टाइमलेस है, एंड ऐसा लगता है जैसे हर पीस बहुत प्यार से, बड़ी ही दिल लगा के स्पेशली क्राफ्ट किया गया है। ब्यूटिफुल रिंग्स हैं उनके पास, एयररिंग्स हैं, डार्जलिंग नेकलेसेस हैं, कंटेम्प्रेरी डायमंड स्टाइल्स हैं, मतलब सब कुछ। कोई भी आपका इवेंट हो, जैसे कि एनिवर्सरी आ रही है, एंगेजमेंट पार्टी आ रही है, सेलिब्रेशन करनी है आपने कोई है, और उसके अलावा यू जस्ट वांट टू ट्रीट योरसेल्फ और ट्रीट योर लव्ड वन, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स इज द प्लेस फॉर यू, वेयर यू विल फाइंड अनमैच्ड क्राफ्ट्समैनशिप एंड ब्रिलियंस। तो एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि उनकी ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने ऐप स्टोर्स पे जाइए और मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स लिख के ऐप डाउनलोड कीजिए उनकी, बिकॉज दिस इज वेयर यू विल फाइंड द लेटेस्ट कलेक्शंस, अपडेट्स एंड ऑल द डील्स एंड एवरीथिंग दैट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ऑफर्स फॉर यू। सो चेक दैट आउट और अपने आप को बिल्कुल वो जैसे कहते हैं ना रॉयल्टी की तरह ट्रीट कीजिए। डू विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स। एंड दिस नेक्स्ट नंबर इज गोइंग आउट टू हरी. Hari, this is from Vishwa Atma Divya Bharti for you.

ओम शांति ओम से सुन रहे थे आप ये गाना. और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं जी कि लेकर आई हूं आपके लिए एक गिव अवे. गिव अवे आया है मिराज लाउंज की तरफ से. तो सबसे पहले तो ये कि अगर आप कुछ नया, कुछ जबरदस्त एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो आपका नेक्स्ट फेवरेट हैंग आउट स्पॉट बन सकता है मिराज लाउंज. एवरी यहाँ पे मिलेंगे आपको प्रीमियम हुकर्स, डिलिशियस बाइट्स, क्राफ्टेड कॉकटेल्स, लाइव म्यूजिक होता है, एज वेल एज एक्साइटिंग डीजे नाइट्स होती हैं. सब कुछ मिराज लाउंज आपके लिए लेके आता है. उसके साथ साथ लेडीज नाइट और कॉलेज नाइट्स भी होती हैं. सो इफ यू आर अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, दे हैव कॉलेज नाइट्स एक्सक्लूसिवली फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स. डू चेक देम आउट गाइस, दिस इज मिराज लाउंज. एंड अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट दे हैव हैप्पी आवर्स दैट रन थ्रू मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 11 AM टू 6 PM. मतलब हैप्पी आवर, हैप्पी डे हो गया पूरा. और साथ ही साथ दे हैव हुकर्स स्टार्टिंग एट 2499 एंड शॉट्स फॉर 499. तो मिराज लाउंज जो कि लोकेटेड है मिकनी रैंच पार्कवे पे, ये आपको जरूर जाइए वहां पे, ट्राई कीजिए उनका खाना, उनका एम्बियंस, उनका वाइब. एंड देयर सो मच दैट इज हैपनिंग एट मिराज लाउंज ऑल द टाइम. एंड नाउ आई हैव दिस $20 ऑफ गिव अवे फॉर यू व्हेन यू स्पेंड $50 और मोर. तो आपका डाइन इन $50 बिल बना तो $20 आपको ऑफ मिलेगा. आई विल पिक टू विनर्स. तो आपकी फरमाइश, आपकी पसंद चल रही है. और अभी एक बड़ा मजे का गाना मुझसे रिक्वेस्ट किया किसी ने, जो कि शाहरुख खान और कैटरीना कैफ पे पिक्चराइज्ड है. और किस फिल्म से है ये मैं नहीं बताऊंगी, ये मुझे आप बताएंगे. 9722355555 पे कॉल कीजिए और बताइए अब जो गाना आप सुनेंगे वो कौन सी फिल्म से लिया गया है और किसने उस मूवी को डायरेक्ट किया है. इस डायरेक्टर की इस मूवी के साथ एक खास एसोसिएशन है और एक इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है. तो फोन उठाइए, कॉल मिलाइए. मिराज लाउंज का ये $20 का गिव ऑफ, दिस गिव अवे इज $20 ऑफ विद अ मिनिमम डाइन बिल ऑफ $50 और मोर.

0: 104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो सुन रहे हैं आप. आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में मैं किरण आपके साथ मंडे थ्रू फ्राइडे 2:30 बजे से 5 बजे तक. वी आर टुगेदर. 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. आज है जी मंडे. हर रोज एक अलग फ्लेवर आपके लिए लेकर आती हूँ. मंडे इसका फ्लेवर है आपकी पसंद, आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे आपकी मनपसंद आरजे के साथ. अगला गाना बहुत ही खूबसूरत आपके लिए प्ले करने लगे हैं. वैसे तो ओरिजिनली ये गाना एक पुरानी फिल्म लावारिस में पिक्चर हुआ था. अमिताभ बच्चन जी थे उसके अंदर, जीनत अमान थी. लेकिन दिस इज अ काइंड ऑफ अ रीमेक वर्जन ऑफ दैट सॉन्ग विच इज सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. वैसे ही तो प्ले कर रहे हैं आपके लिए. लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि द व्यूज एंड ओपिनियंस दैट आर एक्सप्रेस्ड इन द लाइव अनाउंसमेंट्स जो आप सुनते हैं या फिर द इंटरव्यूज दैट वी डू हियर इन आवर शोज आर पेड एडवर्टाइजमेंट्स एंड डज नॉट नेसेसरली रिप्रेजेंट द ऑफिशियल व्यूज ऑफ द रेडियो स्टेशन नॉर द आरजे.
1: Take it away!

हाउस फिल्म से लिया गया था ये गाना, जो कि 2010 में रिलीज हुई थी, लेकिन द वेरी ओरिजिनल सॉन्ग वॉज टेकन फ्रॉम द मूवी लावारिस, जो कि 1981 में रिलीज हुई थी. अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, अमजद खान, सुरेश ओबेरॉय, रंजीत, बिंदु, ओम प्रकाश और राखी, बड़ी ही अमेजिंग कास्ट इन अ ब्रिलियंट मूवी. सो कभी कभी कुछ ऐसी मूवीज के गाने एकदम से रीमिक्स होते हैं कि दिल करता है कि वो पुरानी मूवी जाके दोबारा देखी जाए. सो दिस इज वन ऑफ दोज मूवीज, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ क्लासिक देन डेफिनेटली वॉच इट. अच्छा जी, आगे बढ़ रहे हैं और चित्रा जी की के लिए खास ये गाना अगला लगाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बताती चलूं, दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय AG Fintechs, one of the fastest growing tax firms and accounting firms in the US. हैं जी, चाहे आप इंडिविजुअल हो या आप का कोई स्टार्टअप हो या आप एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन हो, AG Fintechs ऑफर करता है आपको इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस जो आपकी नीड्स के इर्द गिर्द टेलर किए जाते हैं, जैसे कि फ्रॉम बुक कीपिंग, पेरोल अकाउंटिंग, बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकंसिलिएशंस, टू प्रोएक्टिव टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंप्लायंस, फाइनेंस रिपोर्टिंग, एज वेल एज बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज. सब कुछ करता है AG Fintechs टू हेल्प यू कीप योर फाइनेंसेस ऑर्गेनाइज्ड, कंप्लायंट एंड फ्यूचर रेडी. ट्रस्टेड हैं, एफिशिएंट हैं एंड कमिटेड हैं आपकी सक्सेस में पार्ट लेने के लिए. सो AG Fintechs को बनाइए अपना सक्सेस पार्टनर एंड हेल्प देम बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर फॉर यू. गिव देम अ कॉल, कोई भी आपका सवाल है तो 469-942-9888 is the number, 469-942-9888, या फिर आप विजिट कर सकते हैं उनकी वेबसाइट, which is agfintax, FINTAX, agfintax.com.

अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में सुन रहे थे आप लाल सिंह चड्ढा से ये गाना। और अब आगे बढ़ रही हैं जी, लेकर आई हूं आपके लिए एक और गिव अवे। एज प्रॉमिस्ड आई हैव अनदर गिव अवे फॉर यू, और ये आया है आपके लिए नियॉन कैक्टस की तरफ से। सबसे पहले तो ये कि अगर आपको कुछ मजे का ऐसी जगह जाना है जहाँ मैक्सिकन फ्यूजन मीट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस वाली जैसी फील और वाइब आपको आ रही हो, तो फिर नियॉन कैक्टस इज द प्लेस फॉर यू टू गो। फ्रेश इंग्रेडिएंट्स हैं जी, जबीहा हलाल ऑप्शंस हैं। इफ यू आर अ वेजिटेरियन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बहुत सारी वेजिटेरियन चॉइसेस अवेलेबल हैं। और जो स्पेशल बात है वो ये है कि everything, every bite is packed with a flavor, bold, authentic and brilliant flavors. Aur vibe ki to bilkul sab baat hi na kijiye, young, colorful, modern, full of energy. This is a place for you jahan aap jayenge to aap kahenge bhai maza aa gaya. Hang out ho, date night ho, chill out, chill night out plan ho, jo bhi ho, Neon Cactus is a place for you to go. Aur aapko bataye ji ke they have curated cocktails, refreshing mocktails, happy hour hota hai Monday to Friday, aur special deals to har roz hi lagti hain. So check them out. This is Neon Cactus for you, and I have a $20 gift card dine in only for you. Aapko jana hoga, dine in karna hoga to avail your $20 gift card. Aur jo hai, aap ye gift card kaise jeet sakte hain, ab main aapke samne ek gaane ke shuru ke 20 second chalaungi aur aap ye suniye music aur mujhe bataiye ki ye kaun sa gaana hai aur kaun si film se liya gaya hai. 9722355555 hai studio ka number. To pehle zara gaur se suniye, kyunki ये म्यूजिक चलाने के बाद मैं गाना कोई और प्ले करने वाली हूँ ताकि आप लोग मुझे फोन कॉल करें और बता सकें कि गाना कौन सा है और मूवी कौन सी थी. सो लेट्स लिसन टू दिस 20-25 सेकंड्स ऑफ दिस म्यूजिक.

जी क्या ख्याल है, काफी है या एक बार फिर से आपके लिए इसे प्ले किया जाए? मुझे आपने बताना है ये म्यूजिक सुन के कि गाना कौन सा है और मूवी कौन सी थी। सुनिए दोबारा।

0: जी हाँ, ये गाना तो चल रहा था जी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई से, लेकिन जो म्यूजिक आपके लिए प्ले किया था इस गाने से पहले वो था फिल्म दिल चाहता है से, और गाना था ये वो लड़की है कहाँ। बिल्कुल, आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया। फॉर ऑल योर कॉल्स थैंक यू सो मच शर्मिन, सईदा जी, निशित, शीरी, अमिता, रितु, कैस, और अभी भी फोन लाइंस बाज हो रही हैं, टाइम खत्म हो गया। जल्दी से विनर अनाउंस करती हूँ बिफोर वी हेड ऑन टू अ ब्रेक, और आज के जो हमारी लकी विनर हैं वो हैं शीरी। शीरी फैसल, कॉन्ग्रेचुलेशन, जीत लिया है आपने ये गिव अवे। दो दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर नियॉन कैक्टस पे पहुंचाने के लिए, देन यू विल हैव अबाउट 5 to 6 डेज टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड अवेल योर $20 डाइन इन गिफ्ट कार्ड। एंड टू ऑल ऑफ यू हु पार्टिसिपेटेड, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com. Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
2: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
4: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
2: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
4: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
2: ये क्या होता?
4: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
5: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
3: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
6: जिंदगी एक रंगमंच है
7: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
3: कॉल 972-897-1530 firstunitedtexastitle.com।
8: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
9: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
10: लिया।
9: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
10: नहीं आया।
9: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
5: Visit www.sanadainc.com today.
11: Documents ya parcel bhejni hai?
12: हाँ।
11: घर रिलोकेट करनी है?
12: हाँ।
11: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
12: हाँ भाई हाँ।
11: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
13: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में trusted shipping और moving services. SFL Worldwide, हर move का perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
14: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। माई फैमिली होम लोन .com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट माई फैमिली होम लोन .com और कॉल 4697343338, 4697343338. माई फैमिली होम लोन .com इज पावर्ड powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
1: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
10: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी थ्रू चिन्मया मिशन्स बालविहार प्रोग्राम। Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
12: Dallas ki dhadkan, 104.9 FM. Funny Radio. Love.

आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में मैं एक बार फिर आपको वेलकम करती हूं। आप सुन रहे हैं 104.9 एफएम फाइनेंशियल रेडियो। मंडे थ्रू फ्राइडे 2:30 बजे से 5 बजे तक मैं आपके साथ रहती हूं। यही वो गाना था जो हम ब्रेक पे जाने से पहले नियॉन कैक्टस का जिसके लिए गिव अवे लेकर आए थे। अभी मेरे पास आपके लिए एक और गिव अवे बाकी है। सो वो कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो वाली सिचुएशन है हमारे पास। बने रहिए, सुनते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए इस सफर में। आई हैव सो मच लाइंड अप फॉर यू। लेकिन एक बात आपको इम्पॉर्टेंट मंडे के मंडे में आपको ये बताती हूँ कि 4:30 से 5 बजे तक हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं संजय, अटर्नी संजय माथुर फ्रॉम दी माथुर लॉ ऑफिसेस, जो आपके कॉल्स या जो सवाल होते हैं वो डायरेक्टली फानेजा के एयरवेव्स के थ्रू लेते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और डायरेक्टली अपना सवाल माथुर जी से पूछ सकते हैं एंड ही विल बी एबल टू हेल्प यू बेटर। सो 4:30 से 5 बजे के उस सेगमेंट को बिल्कुल मिस मत कीजिए। दिस इज अ ब्रिलियंट कम्युनिटी सर्विस दैट ही ब्रिंग्स फॉर यू ऑल एंड यू कैन गिव इन अ कॉल एंड आस्क एनी क्वेश्चन दैट यू हैव। अच्छा जी, इसी के साथ फिल्मी फरमाइश में आपकी पसंद आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे आपकी मनपसंद आरजे के साथ का सिलसिला है बिल्कुल जारी। और क्या खूबसूरत आनंद जी आपने गाना याद दिलाया है। दिस इज सच में दिल तो बच्चा है जी।

गुजारिश फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना। और देखिए जी, रक्षाबंधन आने वाला है, एक बहुत ही स्पेशल बहन भाई के रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करने का फेस्टिवल। और हम आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे इस फेस्टिवल को, और ना सिर्फ हम बल्कि चौकटाओ कैसीनो भी। सो दिस रक्षाबंधन, फन एशिया रेडियो एंड चौकटाओ कैसीनो एंड रिजॉर्ट Durant wants to hear your most unforgettable memory with, you know, your brother, या फिर अगर आप भाई हैं तो your sister, या फिर बहन भाइयों के साथ जो आपकी बेहतरीन memory है वो आपको हमारे साथ share करनी है। अब आपको ये क्या करना है, एक मिनट का वॉइस नोट आपको इस मेमोरी का हमें हमारे लिए बनाना है और इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। तो नंबर सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, दैट नंबर इज 214-837-7147. Once again, the number is 214-837-7147. एक मिनट का वॉइस नोट बनाइए टॉकिंग अबाउट योर मोस्ट अनफॉरगेटेबल मेमोरी विद योर ब्रदर और सिस्टर। एंड इससे क्या होगा, यू कुड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज, एंड जो ग्रैंड प्राइज होगा इसका वो होगा एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटाओ कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट। सो कंप्लीट कॉन्टेस्ट डिटेल्स आपको मिलेंगी हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे। सो फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
8: Call 857-891-8942 today.
9: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
10: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
9: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
10: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाय सुपरहिट
11: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
12: Ocho.
13: Hoko.
12: Ocho.
13: Hoko.
12: Ocho.
13: It's Hoko.
14: अरे बस भी करो यार
13: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है
14: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी आइकॉनिक सैंडविचेस डिलीशियस करीज चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा
15: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में वही आइकॉनिक फ्लेवर्स वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड कैटरिंग ऑप्शंस टेस्ट इंडिया रीलिव मेमोरीज
16: जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना
15: लाइफ हो या हेल्थ कब क्या हो जाए पता नहीं 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर एक्सरे सीटी स्कैन हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा सब कुछ एक ही रूफ के नीचे लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 days a week 8 a.m. to 8 p.m. walk in anytime 9191 Kaiser Way suite 205 Frisco
14: suno kal bahut kaam hai pehle grocery fir pooja ka saman gifts bhi khareedne hain aur in sab kuch ke baad main cooking nahi karne wali kahin acha sa dinner karke aayenge
15: aur ye sab kuch agar ek hi jagah ho jaye to
14: kahan
5: foodistan in Aubrey fresh grocery halal meat pooja essentials live pani puri fresh ganne ka juice bakery items plus lowest price match guarantee and inside foodistan enjoy the premium indian cuisine at dy An upscale restaurant for the perfect family dinner.
15: Foodistan in Aubrey. Everything they see. One place, one vibe.
17: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस एंटरटेनमेंट रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214837 7747 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
15: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.
8: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेशिया रेडियो.

फन एशिया रेडियो सुन रहे हैं आप. आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में मैं किरण आपके साथ. और ये गाना जो रावण से देखा मैंने और आपके लिए प्ले किया, रफ्तारें, जिसमें शाहरुख खान एक ट्रेन का पीछा करके उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज उसके अंदर विलन जो है वो करीना कपूर के रूप में बैठा है. तो इससे रफ्तारें जी गाने तो हुए, लेकिन एक सीरियस भी रफ्तार का प्रॉब्लम हो सकता है और वो ये कि एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम एंड इट जस्ट टेक्स अ सेकेंड बट रिकवरिंग कैन टेक अ लॉन्गर टाइम. सो अगर आप किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या फिर देर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो आपको मैं ये बताती चलूँ कि अटर्नी उमर ख्वाजा इज द राइट पर्सन टू गाइड यू एंड टू हेल्प यू. आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए एंड लेट द अटर्नी उमर ख्वाजा एंड ऑफिसर्स, लॉ ऑफिसर्स हेल्प और हैंडल द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, जैसे कि पेपर वर्क, लीगैलिटीज, इंश्योरेंस कंपनीज, द निटिग्रिटीज ऑफ दी सिचुएशन, जो कि हमें तो बाज़ात मालूम भी नहीं होता कि इसके अंदर कितनी लेयर्स आफ्टर लेयर्स ऑन लेयर्स हैं जो कि यू नो परतें चढ़ी हुई होती हैं, और वो सारा कुछ आपके लिए अटर्नी उमर ख्वाजा हैंडल कर सकते हैं. और आप अपने रिलैक्स कीजिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए. लेट देम हैंडल इट, गिव देम अ कॉल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, दे विल हेल्प यू गेट द बेस्ट कॉम्पनसेशन एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग जब तक कि आप केस जीत नहीं जाते. सो विन विन सिचुएशन है आपके लिए. कॉल देम फॉर अ फ्री कंसल्टेशन, दैट नंबर इज 4693005046 या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं विच इज attorneyomar.com. और अब जो ये गाने के बाद हम वापस आएंगे तो मैं आपके लिए ट्रैफिक की अपडेट लाऊंगी विच विल बी ब्रॉट टू यू बाय द लॉ ऑफिसर्स ऑफ अटर्नी उमर ख्वाजा.

जी हाँ, और मुफ्त से मुझे याद आया कि मेरे पास एक टिकट है बिल्कुल फ्री आपको देने के लिए, बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त, और वो है जी प्रभु देवा के कॉन्सर्ट का। मथांगी एंटरटेनमेंट ग्रुप इज प्राउडली ब्रिंगिंग द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया प्रभु देवा लाइव इन DFW, और उनके साथ ज्वाइन करेंगे लॉरेन गॉटलिब, सोनल बहादुरिया, अलेक्जेंडर नोयल, हरिनी, नताशा एंड सानवी मेघना। तो दिस विल बी एन अल्टीमेट पैन इंडियन डांस कॉन्सर्ट। जब इतने बड़े बड़े डांसिंग स्टार्स स्टेज पे आएंगे तो क्या होगा, ये जानने के लिए आपको कॉन्सर्ट अटेंड करना होगा। सो बताती चलूं आपको कि दिस इज हैपनिंग ऑन August 1st, दैट इज सैटरडे। इस सैटरडे हो रहा है टेक्सस ट्रस्ट CU थिएटर में इन ग्रैंड प्रेरी। आप अपने टिकट्स अभी बुक कर सकते हैं बाय गिविंग अ कॉल एट दिस नंबर। नंबर नोट कर लीजिए 248-233-3828, 248-233-3828। फनीजर रेडियो जो है वो मीडिया, वी आर प्राउड मीडिया पार्टनर्स ऑफ दिस इवेंट। और आपको ये भी बताते चलें कि आपके लिए बुक जो टिकट्स हैं उनको खरीदना ज़्यादा आसान कर दिया है। हमारे सोशल मीडिया के पेजेस पे जाइए फनीजर नेटवर्क के, और वहाँ पे पोस्ट स्पिन हुई हुई है हाउ टू बुक योर टिकट्स ईजिली फॉर दिस प्रभु देवा लाइव कॉन्सर्ट। और अब मेरे पास ये गिव अवे है आपके लिए, एक टिकट ऑफ प्रभु देवाज लाइव इवेंट, और आप इसे जीत सकते हैं। और ये जो क्या कहते हैं, जब आप जीतेंगे इस टिकट को तो फिर आप जरूर जाइए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को, सारों को साथ लेके जाइए ताकि अच्छा आपका ग्रुप बन जाए। सो अब आपको क्या करना है, इस सवाल का जवाब देना है। प्रभु देवा ने अपने करियर में दो दफा अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड जीता, एक दफा तमिल मूवी के लिए और एक दफा एक हिंदी मूवी के लिए। आपको मुझे बताना है कि वो कौन सी हिंदी फिल्म थी जिसके लिए प्रभु देवा ने नेशनल अवार्ड जीता फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी। वंस अगेन सवाल मैं रिपीट करती हूँ आपके लिए, वो कौन सी हिंदी फिल्म थी, द ओनली हिंदी फिल्म जिसके लिए प्रभु देवा ने नेशनल अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड जीता फॉर बेस्ट कोरियोग्राफर। मुझे बताइए उस फिल्म का नाम और वो गाना भी मुझे साथ बताइए जिसके लिए प्रभु देवा ने जीता था ये बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड फॉर नेशनल फिल्म्स अवार्ड, विच इज इज ओनली हिंदी फिल्म अवार्ड। 972-235-5555।

जी हाँ, प्रभु देवा का ये एक टिकट मैं आपके लिए लेके आई थी। वैसे तो ये गाना जो चल रहा था मिन, देखिए मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन हमेशा गलत हो जाती है, इट वाज मिन सरा, या मूवी का नाम था मिन सरा कन्नावू, ये नाम था जी। और तमिल, तेलुगु, हिंदी सभी में इनकी मूवी की लैंग्वेजेस रिलीज हुई थी, और ये उनका हिंदी वर्जन आप सुन रहे थे गाने का। इस मूवी के लिए भी मेरा ख्याल है तमिल में प्रभु देवा ने जीता था नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर दिस मूवी एज बेस्ट कोरियोग्राफर। लेकिन सवाल था आपसे कि वो कौन सी बॉलीवुड मूवी थी जिसके लिए उन्होंने बेस्ट कोरियोग्राफर जीता, और उसका नाम है जी मूवी का लक्ष्य, जिसका गाना था मैं ऐसा क्यों हूं। इस गाने के लिए प्रभु देवा ने जीता था नेशनल फिल्म अवार्ड, 52nd नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफर। और यही स्टार स्टडेड, वो आप कहते हैं ना कि सो मेनी फेदर्स इन हिज कैप वाले स्टार हमारे पास आ रहे हैं लाइव इन कॉन्सर्ट। और आप सबकी फोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर पार्टिसिपेटिंग। और मैं आपको बताती चलूं जी, आज के जो हमारे लकी विनर हैं वो हैं रक्षित नागिया। रक्षित, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये वन टिकट। जो है आपका नाम और नंबर हमने नोट कर लिया है, वेट कीजिए, यू माइट रिसीव एन ईमेल। प्लीज कीप एन यू नो लुक आउट ऑन द ईमेल एंड see how you will receive the ticket. But congratulations on winning this. और आप तमाम लोग जिन्होंने participate किया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, सबने सही जवाब दिए। But there can only be a one winner, and that goes with a math का formula. मैं कभी personally winner नहीं select करती, जिस sequence में आप call करते हैं उसी sequence में वो number आपके सारे डाल के math का number मुझे बताता है कि कौन है winner. So keep participating and keep listening. This is 104.9 FM. इस गाने के साथ हम बढ़ रहे हैं break की तरफ। break से वापस आकर हमारे साथ होंगे संजय माथुर जी फ्रॉम द माथुर लॉ ऑफिसेज। ही विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस लाइव। अगर मैं आपको होल्ड पे डालूं और आपको उनकी आवाज अपने यू नो फोन पे सुनाई दे रही हो, एंड ही इज आंसरिंग सम अदर क्वेश्चन, सो प्लीज होल्ड योर स्पॉट इन द लाइन। दैट मींस यू आर नेक्स्ट इन लाइन। डू नॉट गेट इंपेशेंट एंड ड्रॉप द कॉल। थैंक यू।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स और ओल्डर टू गेम।
2: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स, मिड सिटीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
3: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
4: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
5: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
6: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
7: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
8: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
2: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है,
3: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे.
4: तारीख पर तारीख.
5: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
3: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
6: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
7: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
6: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
7: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
6: सच में सब संभालेंगे?
7: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
8: कितने आदमी थे?
9: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है.

You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran. में ये टाइम होता है जब हम संजय माथुर जी के साथ कनेक्ट करते हैं. शायद कुछ मसरूफियत की वजह से इस वक्त वो लाइन पर नहीं आ पा रहे हैं. I'm going to try and take him one more time and hopefully he will be here soon with us. In the meanwhile, I have still have lots of information. अभी मैं सोच रही थी कि आपको वेदर भी देना था, ट्रैफिक भी, करेंसी भी अपडेट देनी थी, तो वो सारी अपडेट आपके लिए लाइंड अप है. बट राइट आफ्टर दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग, स्टे ट्यून. I am here with you till 5 p.m.

और इसी के साथ वक्त आ चला है आपको वेदर की अपडेट देने का. जी आज है मंडे जुलाई द 27th, 4:42 PM इन द स्टूडियो और इस वक्त सिटी ऑफ मेकिनी में है 99 degrees. हाउएवर इट फील्स लाइक 101, तो काफ़ी गर्मी है जी. दिन रहा सनी हॉट विद हाईज अराउंड 101 ऑफ कोर्स और शाम रहेगी मोस्टली क्लियर विद लोज इन द अपर 70s. पोलन काउंट इज 4.6 विच इज लो मीडियम. ग्रास is one thing that is bothering where pollen is concerned, jabki UV index is extremely high. As one more time, so agar aapka sham mein kahin bahar nikalne ka plan hai, you're going out for a walk, you have some evening activities lined up, please make sure you keep your sunscreens handy as well as you keep yourselves hydrated, because that is very very important. To sunrise aaj ka hua ji subah 6:35 AM, jabki aaj ka sunset hoga 8:29 PM. That was your weather forecast for today. Stay cool and stay happy.

तनुएड्स मनु से सुन रहे थे आप ये गाना आर माधवन और कंगना रनौत पे पिक्चराइज्ड। और अब जी गोल्ड प्राइस अपडेट देने का आपको टाइम आ चुका है। अकॉर्डिंग टू goldprice.org इस वक्त एक आउंस सोने की कीमत है $4,076.70, जबकि एक ग्राम सोने की कीमत राइट नाउ इज $131.07। तो कल की निस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में 52 सेंट्स की कमी हुई, जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $16.21 की कमी देखने को मिली। But that's pretty much all that I have for you where your finance matters right here on your afternoon draft time with Suneri Kiran.

और इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी दिस आफ्टरनून. बहुत सारे गिव अवेज आज आपके लिए लेके आई. आप सबने हर गिव अवे में जी खोल के पार्टिसिपेट किया. बहुत बहुत शुक्रिया. और अब कल मिलूंगी आपसे ट्यूजडे. ट्यूजडेज इज बॉलीवुड स्पॉटलाइट. स्पॉटलाइट डालेंगे एक ऐसे स्टार पे जिन्होंने हमें कुछ बेहतरीन गाने दिए हैं बॉलीवुड में, जो मैं और आप सुनते हैं और हमेशा एंजॉय करते हैं. उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा मुझे, यानी कि आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण 2:30 PM टिल 5 PM मंडे थ्रू फ्राइडे. आई विल सी यू टुमारो. यू हैव अ लवली रेस्ट ऑफ योर डे.

A very warm welcome to the listeners of FunAsia Radio 104.9 FM, bringing the community together. A big shout out to Miss Kiran for a lovely afternoon show. This is Banda Bindaas with your evening drive time show, jiska naam hai Jeeta Bindaas Show, and I am very glad that you all are here with me. Sabko pehle to namaskar, salam alaikum, sat sri akal, came to DFW. It's a Monday evening, July 27th, it's 5:11 in the studio clock. That means the next 2 hours is going to be full of fun, some lovely music, some lovely songs, kuch aapki baatein, kuch meri, hamesha ki tarah. Thanking the Almighty for yet another day, yet another evening where I could be here entertaining you all with the best of my ability. अगर आपके लाइफ में आज कोई खुशी का दिन आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, वैसे तो सुबह उठना, गेटिंग अनदर डे एट अनदर अपॉर्चुनिटी एट लाइफ टू डू व्हाटएवर यू लव, आई थिंक दैट्स अ बिगेस्ट जॉय दैट एनीवन शुड बी हैप्पी अबाउट. बट एनिवर्सरीज, बर्थडेज, दीज ऑल रिमाइंड यू दैट देयर आर सम लवली पीपल अराउंड यू, एंड इफ यू वांट टू सेलिब्रेट देम, स्टूडियो लाइंस आर ओपन, 972-235-5555. लेट्स स्टार्ट दिस इवनिंग विद दिस लवली ट्रैक जस्ट फॉर यू.

0: ಕಲಿ ಉಡ್ ಮಟಕ್ ಮಟಕ್ ಮಟಕ್ ಕಲಿ ಮಸಕ್ಕಲಿ ಮಸ ಮಸ ಮಸಕಲಿ. Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Documents ya parcel bhejni hai?
3: Haan.
2: Ghar relocate karni hai?
3: Haan.
2: Gaadi bhi transport karna hai?
3: Haan bhai, haan.
2: Toh phir tension kyun le raha hai? SFL Worldwide ko call kar.
4: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. Sif India nahi, USA aur duniya bhar mein trusted shipping aur moving services. SFL Worldwide, har move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
5: अरे यार, घर मिल गया.
2: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
1: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. अजय इज एन एक्सपीरियंस रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
2: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
1: बिल्कुल. विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
6: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
7: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
8: Kya matlab?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
9: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: Ab to karna hi padega, madam.
10: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
12: Are sun, ye astrologer बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
15: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
16: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ.
1: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा. आपका हक, उनके जिम्मेदारी.
17: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

माना कि शादी के बाद आदमियों को पत्नी से मतलब पहले बहुत प्यार प्यार प्यार, फिर थोड़ा डर डर डर लगता है, पर कई लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है यार। और एक मैं हूँ, अगर आप मेरी तरफ देखें तो मैं इशारों में समझ जाता हूँ क्या चाहती है, क्या करवाना है, क्या नहीं करना। इसलिए डोंट बी स्केर्ड माई फ्रेंड्स, जस्ट फॉलो द इशारे। अब वो चाहे आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, या फिर बातों ही बातों में, या फिर उंगली ही उंगली में, इधर उधर ऐसे वैसे, लेफ्ट राइट सेंटर, इट इज 5:25 इन द स्टूडियो क्लॉक। 5:25 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। मंडे की शाम है, जुलाई की 27 तारीख। देखते देखते 4 दिन में हम आ जाएंगे जी अगस्त में, एंड अगस्त में हमारा होता है इंडिपेंडेंस डे फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। इस बार सेलिब्रेशन IANT की है जी, जबरदस्त है। इफ यू हैव नॉट मार्क योर कैलेंडर्स, देन मार्क योर कैलेंडर, क्योंकि IANT का इवेंट है जी, विच इज द इंडिया इंडिपेंडेंस डे एसोसिएशन का इंडिपेंडेंस डे मेला, एंड दिस इज the 80th Independence Day brought to you by IANT. बहुत सारी चीजें एंटरटेनमेंट की होंगी जी, एंड दिस इज ऑन द 15th of August, 2 PM onwards at the Comerica Center in Frisco. And the best part is कि भैया इस बारी सब कुछ इंडोर है, चिंता नहीं करना, धूप लगेगी आपकी, सन टैनिंग की वो परवाहें आप करने की जरूरत ही नहीं है, इंडोर होगा जी। बहुत सारे फूड वाले वेंडर ऑफकोर्स, उसके साथ ग्रैंड परेड, कल्चरल परफॉर्मेंसेज, लाइव म्यूजिक, शॉपिंग, एंड इनक्रेडिबल ड्रोन शो एंड फायरवर्क्स फिनाले। IANT Bazaar 2025.

0: लो जी, एक और नए पैकेट में पुरानी बुझिया। दिस वॉज राणा जी 2.0, महिरा शर्मा एंड ऑफ कोर्स इलार, उनकी आवाज है जी पुरानी, साथ में अलका याग्निक जी। बट दिस इज द न्यूअर वर्जन एंड इसका म्यूजिक वीडियो शूट भी बनाया है। ओके गाना, आई थिंक इट स्टिल हैज द ओरिजिनलिटी ऑफ अलका याग्निक एंड इला अरुण। बट गलती माफ़ करना, और गलतियां जो है ना इंसानों की फितरत में होती हैं, और कई बार गलती जो है वो बहुत महंगी पड़ जाती है। वी डोंट रियलाइज हाउ बिग दिस मिस्टेक माइट कॉस्ट अस, एंड दैट इज अ मिस्टेक दैट वी आल्सो मेक व्हाइल डूइंग टैक्स प्लानिंग, नॉट टैक्स प्लानिंग बट योर रियल एस्टेट प्लानिंग। एंड यू नो अबाउट NRI वेल्थ, इफ यू डोंट नो लेट मी टेल यू दैट NRI वेल्थ को लीड करती हैं दीप्ति वर्मा। उनका फोन नंबर है 6692435799, दैट 6692435799। एंड यू नो कि आप लोग इतनी मेहनत करते हो अपने एसेट्स को बनाने में, बट हम ये भूल जाते हैं कि उस एसेट की प्रोटेक्शन कैसे करनी है, वो नेक्स्ट ऑफ किन तक किस तरह जाएगा। दीप्ति वर्मा फ्रॉम NRI वेल्थ मेक्स दैट प्रोसेस इजियर, एक्सप्लेन्स यू, मेक्स यू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस, एंड देन हेल्प्स यू सीमलेसली पास ऑन योर एसेट्स टू योर चिल्ड्रन। सो आज हम उनसे पूछेंगे कि ये कौन सी तीन बिगेस्ट इस्टेट प्लानिंग मिस्टेक्स हैं जो फैमिलीज अक्सर करती हैं। वेरी गुड इवनिंग टू यू दीप्ति।
1: Good evening, Marvin. How are you doing?
0: God is good. Life is beautiful. And, you know, हम इंसान जो है, इंसान गलती का पुतला है, बट कई गलतियां बहुत महंगी पड़ती हैं. And ये जो तीन गलतियां estate planning की हैं, why don't you tell us about them?
1: Thank you, Marvin. You have very rightly said it. Because, you know, as Marvin said, that we make mistakes and those come out to be really expensive, not only for us, but for our families. Because we spend years building our wealth. So, guys, let's spend a little time protecting it too. So, coming to Marvin's question, that yes, the first mistake I would like to point out is that people think that because everything is in a joint name, so we are all good, we don't need a trust. So just because your home or your bank account is jointly owned doesn't mean that your family has a complete set plan. Because a trust isn't just about ownership. It's about creating a roadmap. It will tell your loved ones who will manage your affairs, who gets what and what time. And the second mistake is one I hear all the time. People say, my children already know what I want. They are very, you know, wise and I don't need to explain it to them. Maybe they do, but knowing and having it legally documented are two very different things. So when emotions are high and families are grieving, misunderstandings will creep in, even in the closest of families. So a properly structured estate plan will remove all those uncertainties and give everyone a clear path. And a third mistake, probably, which is the most common mistake, is people say, I'm too young, I'll do it later. So, but the truth is, estate planning has got nothing to do with age. It has everything to do with responsibility. So if you own a home, have children, have business, rental properties, please get your trust made, because that is the only way that you can protect your family. So estate planning isn't about planning for death. It's about protecting the people you love and making the life easier for them when the unexpected is going to happen. So if something is going to happen to you tomorrow, would your family know exactly what to do? If the answer is I'm not sure, then let's get started. Get into a conversation. Call me at 669-243-5799. I will repeat my number, 669-243-5799. Let's get on to a conversation, a discussion, and we will get this formatted to you, for you, in the most simplest and the easiest way and the most convenient way.
0: Wonderful. And that is NRI Wealth. That's the name that you need to remember. NRIWealth.com is the website. Phone number once again for you, 669-243-5799. That's 669-243-5799. Deepti ji, it's a pleasure talking to you. And I always encourage my listeners to safeguard their future, especially when you worked so hard. You ek hi to kaam ke liye mehnat kari hai aapne, ki apne bachchon ko aur apne aane wale poton ko, naaton ko, you can gift your assets. So make sure you save them properly and you secure them and you allocate them properly as well. With that, it is time for another giveaway. Thanking once again Deepti Verma, NRI Wealth. Today marks the birthday of two people which are going to be in the next movie jisse main agla gana lagane laga hu, theek hai? So movie ka gana hai jisme in dono actors ne play kiya hai role. The male actor is born on today's date, 1967. He sports administrator रह चुके हैं, rugby player रह चुके हैं, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है, and served as a president of Rugby India since 2021. बंगाली फिल्मों में भी आए हैं, जैसे Mr. and Mrs. Iyer, and उसके साथ साथ हिंदी फिल्म्स जैसे प्यार के साइड इफेक्ट, मान गए मुगले आजम, झनकार बीट्स, कुछ लव जैसा, दिल धड़कने दो, चमेली, शौर्या एंड मोर. द लेडी दैट इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे हैपेंस टू बी फ्रॉम द इंडस्ट्री, related to somebody big in the industry, and today is her birthday as well, 27th of July 1977, and she was born in Bombay. इनकी भी कुछ फिल्में जैसे कि प्यार में कभी कभी, जिस देश में गंगा रहता है, मुझे कुछ कहना है, मजनू, ये है जलवा, मैंगो सूफले, झनकार बीट्स एंड चमेली. आपको बताना मैं किस एक्टर मेल और किस एक्ट्रेस फीमेल की बात कर रहा हूं, एंड दिस इज फॉर अ गिव अवे विच इज कमिंग टू यू from none other than Fun Pizza Kitchen. ये आपको दे रहे हैं जी $10 worth of gift certificate or a gift card, absolutely free, and this is for their Frisco location. जिसने ये पहले जीता है, please don't bother to call in, especially in the last 30 days. And if you are calling in, please make sure that you're able to go to Frisco and enjoy this $10 gift certificate from Fun Pizza Kitchen. तो दोबारा से, लड़की है जी और एक लड़का है, जिनका आज दोनों का जन्मदिन है. दोनों ने एक फिल्म में साथ काम किया था जिसका नाम था झनकार बीट्स. गर्ल स्टोरी, आई हैव टोल्ड यू, बॉर्न ऑन टुडेज डेट, फिल्में उनकी प्यार में कभी कभी, जिस देश में गंगा रहता है, एंड मेनी मोर. एंड द अदर वन इज समबडी हु हैज बीन एसोसिएटेड विद रग्बी इंडिया एंड ऑल्सो द प्रेजिडेंट ऑफ दैट. और बहुत सारी बंगाली फिल्में और हिंदी फिल्में जैसे कि दिल धड़कने दो, चमेली, शौर्या एंड मेनी अदर्स. हियर इज द ट्रैक, यू गाइज टेल मी whose birthdays we are talking about today, male and female.

0: वाह वाह वाह वाह वाह, फटाफट मतलब कॉल एकदम मेरे सवाल पूछते ही रेडी टू गो, इंसाइक्लोपीडिया लगते हैं बॉलीवुड के। गुड इवनिंग टू यू फनेजा, हु इज दिस?
1: दिस इज भावेश।
0: भावेश भाई कैसे हैं आप?
1: बस चल रहा है भाई, आप बताओ आप कैसे हो?
0: हमारा भी चल रहा है, बस चल रहा है आपका? हमारा स्कूटर चल रहा है, पापा को देके आया था पुराना, अभी भी खड़ा है वहाँ वेस्पा, वो कभी कभी स्टार्ट करके चला देते हैं, वो भी चल रहा है। अच्छा
1: सही है
0: भावेश भाई ये बताइए, मेल एक्टर और फीमेल दोनों के नाम याद हैं आपको?
1: राहुल बोस एंड रिंकी खन्ना।
0: राहुल बोस एंड रिंकी खन्ना, आर आर है जी,
1: यस
0: फ्रिस्को जा सकते हैं उसमें भी एक आर है,
1: हाँ हाँ फ्रिस्को जा सकते
0: और
1: हैं,
0: आपके पास कार है उसमें भी एक आर है,
1: यस
0: और आपका आपकी
1: करेक्ट,
0: बीवी से प्यार है उसमें भी एक आर है,
1: यस यस।
0: ठीक है जी, फन एशिया रेडियो में भी आर है, चलो बहुत बढ़िया, ये आर का
1: आपके
0: सफर
1: साथ
0: कर,
1: फ्रेंडशिप में भी आर है,
0: अरे फ्रेंडशिप में भी आर है, क्या बात है यार, और यार में भी आर है, क्या बात है। ऑलराइट,
1: यस
0: विद दैट भावेश कांग्रेचुलेशंस, यू विल टेक, आई विल टेक योर डिटेल्स एंड यू विल गो टू फ्रिस्को लोकेशन टू पिक दैट अप। यस इट इज इंडीड राहुल बोस, हु इज एक्चुअली आई डोंट नो दिस अबाउट हिम, दैट ही वाज अ फॉर्मर रग्बी प्लेयर एंड हैड नो आइडिया, एंड वाज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ रग्बी इंडिया सिंस 2021, बॉर्न ऑन टुडेज डेट इन कैलकटा वेस्ट बंगाल इंडिया, ही इज 58 इयर्स ऑफ एज, एंड द ब्यूटीफुल एंड क्यूटी पाई रिंकी खन्ना is also celebrating her birthday, the daughter of Dimple Kabadia ji and Rajesh Khanna. Here is their track. Once again, wishing both of them a very happy birthday from the team here at Fun Asia and from Banda Bindas.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: यार, मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार.
0: तो चल, उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं.
1: What?
2: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
3: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
4: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
3: नहीं.
4: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
3: नहीं.
4: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
3: वो भी नहीं.
4: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
5: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax. Your growth, our strategy.
0: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
6: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
8: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
9: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
8: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
10: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
11: इन प्लेनो.
10: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
12: होचो
13: होको
12: होचो
13: होको
12: होचो
13: इट्स होको. अरे बस भी करो यार.
14: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
13: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
5: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज. हु आर द एम्प्लॉइज योर कंपनी सिंपली कैनॉट अफोर्ड टू लूज? एंड आर यू डूइंग इनफ टू रिवॉर्ड एंड रिटेन देम? एन एग्जीक्यूटिव बोनस प्लान यूजिंग लाइफ इंश्योरेंस कैन बी अ फ्लेक्सिबल वे टू ऑफर सिलेक्ट की एम्प्लॉइज वैल्यूएबल प्रोटेक्शन टुडे एंड पोटेंशियल फ्यूचर बेनिफिट्स लेटर. टू लर्न वेदर दिस स्ट्रेटजी मे फिट योर बिजनेस, विजिट shopcompareinsure.com टू गेट स्टार्टेड. कॉल 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
15: Is Raksha Bandhan Choctaw Casino and Resort Durand ke saath celebrate kijiye wo rishta jisme nokjhok bhi hai, dosti bhi and a lifetime of unforgettable memories. Apne bhai ya behan ke saath judi sabse yaadgar memory hame 1 minute voice note mein bheji and win exciting daily prizes including dining experiences, entertainment, resort stays and the grand prize, an unforgettable sibling reunion weekend at Choctaw Casino and Resort Durand. Apni story WhatsApp kijiye 214-837-7147 par ya contest details ke liye visit kijiye Fanisha Radio ke social media pages.
6: Choctaw Casino and Resort Durand, where unforgettable memories are made together. Must be 21 or older to participate. Terms and conditions apply. Please play responsibly.
0: For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner Fun Asia Network.
16: Hello listeners, hi, my name is Sumaira Jumani and I am from Sanada Inc. Today I'm here to update you about the auto insurance premium. The auto insurance premiums are getting higher day by day. There are several factors that are impacting the higher cost of the insurance, which includes the higher inflation, cost of material, cost of all kind of labor. So that is impacting the price. Me and my team, we are available here to assist you and see if you can save some money, get better coverages along with the affordable prices. You can contact me or my team at 972-863-7772. We communicate in different languages. that includes English, Urdu, Hindi, Gujarati, Punjabi. Please do contact us and we would love to assist you. Thank you.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Kahan gaya? Kahan rakha tha? Suno na, mera wo wala set kahan hai?
8: Kaun sa?
7: अरे वो गोल वाला थोड़ा ट्रेडिशनल उसमें पोलकी भी है
8: अरे सारे तो सेम है
7: नहीं वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने ये ये ये देखो ये वाला
8: ओ हाँ ये तो अलग है
9: अलग तो होगा ही श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
10: सुनो कल बहुत काम है पहले ग्रोसरी फिर पूजा का सामान गिफ्ट्स भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे
11: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
10: कहाँ फूडिस्तान इन ऑबरी फ्रेश ग्रोसरी हलाल मीट पूजा एसेंशियल्स लाइव पानी पूरी फ्रेश गन्ने का जूस बेकरी आइटम्स प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी एंड इनसाइड फूडिस्तान एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर
11: फूडिस्तान इन ऑबरी एवरीथिंग देसी वन प्लेस One vibe.
12: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
13: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो
14: अरे मैडम करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या
15: अब करेगा बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन स्टनिंग लहंगास एलिगेंट साड़ीज ब्राइडल ज्वेलरी मेंस एंड किड्स वेयर
14: इतना सब और प्राइस
15: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन अब हर आउटफिट बोलेगा
16: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम चिकन तंदूरी मलाई चिकन टिक्का पनीर टिक्का मोमो या सोया चाप अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन
17: ब्रेकिंग न्यूज होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग नो हिडन फीस नो सरप्राइजेस और हाँ सबसे बड़ी खबर उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज हजारों फैमिलीज का भरोसा विजिट माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम और कॉल 4697343338 4697343338 माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम इस Powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
18: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.
19: Hi, this is Priyanka Chopra, and you're listening to Fun Asia Radio.

Absolutely, Bindaz Bolo Ji. Naam Marvin Das Bolo. Welcome back to your evening drive time show. It's 6:06 in the studio clock. 6:06 ho chuke hain ji. Monday ki shaam hai, July ki 27 tarikh. Dekhte dekhte bas saal piche jaate rehte hain. Hum kyun nahi piche chale jaate yaar? Matlab aging wise ki baat kar raha hu. Waise to main apne ghar ke piche roz jaake dekhta hu. Ek din mere teacher ne kaha ki Marvin ye 6 joote hain na, ye 7 jayenge. Maine kaha sir ye 6 joote hain to 7 kaise jayenge? सोचते नहीं है और बात को दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट यू बाय पेज 3 ईटरी. अगर शाम का टाइम है जी, पकोड़े इस टाइम अच्छे अच्छे मिल जाएं. पकोड़े छोड़ो, पकोड़ों के अलावा एक चीज बताऊं, पालक पत्ता चाट खाओ. वहां जाके चुपचाप कुछ नहीं कहना है, बोलना एक पालक पत्ता चाट, एक आप ले लो वड़ा पाव उनका, ठीक है? शाम के टाइम जबरदस्त, मतलब आपकी शाम ऐसी बनेगी आप कहोगे मार्विन ये क्या कर दिया तूने. मैं कहूँगा कुछ नहीं, मैं आपसे प्यार करता हूँ इसलिए अच्छी अच्छी चीज़ें आपको खिलाता रहता हूँ. अभी मैं लगाने लगा हूँ जी दो बैक टू बैक गाने, बिकॉज ये जो गाने हैं ये आज स्पेशल है. क्यों है ये स्पेशल ये बताऊँगा, पहले सुनते हैं इनकी प्यारी सी आवाज़.

0: Known for her vocal talent, widely recognized as the Golden Voice of India, entitled bestowed upon her by the Royal Albert Hall, London in 2001, the Times Group has honored her as the Melody Queen of Indian Cinema, reflecting her immense contribution to the industry. She's also celebrated as the Little Nightingale of Indian Cinema, Nightingale of South and different regions. She's known by various affectionate titles. Agar inke kuch accolades ki baat ki jaye, to 6 National Film Awards, 10 Filmfare Awards South, 43 straight government awards from 8 states of India, including 18 from Kerala, 12 from Andhra Pradesh, 5 from Tamil Nadu, 4 from Karnataka, and 1 from Odisha and West Bengal. Today, we are celebrating her. Lovely, lovely wishes from our team here at Funasia and from Manavin Das, Marvin Das. On the other side of the commercial break, I do have India Bazaar ka gift hamper. Kaun jeetega? Dekhte hain, bhaiya. Ek chote se break ke baad aaya.
1: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
3: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
4: Calculating route. Rerouting.
3: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
4: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
3: क्यों?
4: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
3: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
5: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
4: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
6: जिंदगी एक रंगमंच है
7: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल. असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो. पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल. हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ.
8: कॉल 972-897-1530. firstunitedtexastitle.com.
9: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funasia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
10: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
11: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
12: लिया.
11: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
12: नहीं आया.
11: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
5: Visit www.sanadainc.com today.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
9: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
3: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
8: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
12: Aji sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
17: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
17: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
12: सच में? सब संभालेंगे?
17: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

जब आपकी पत्नी अचानक एकदम शांत हो जाए और मुस्कुराने लगे तो समझ जाओ कि ये तूफान से पहले की शांति है। बिल्कुल तूफान की सक्सेसफुल जो सेटिंग होती है ना, वो हो चुकी है।

और फिर जब वो ये कहते ना तुमसे ना एक बात पूछनी थी, बस हो गया पटाखा। अच्छा, ज्यादातर वो संगीन सवाल तब पूछती हैं जब उन्होंने तुम्हारे छाती पर सर रखा हो, दिल की धड़कने तुम्हारी सुन रही हो उसको, धक धक धक धक धक धक, फिर वो एक सवाल पूछती है। अच्छा, उस वीकेंड पे वो जो संगीता थी, बस धक धक धक धक धक, मैं तो बुल्ट की बात कर रहा था, वो ऐसे स्टार्ट होता है धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक। वेलकम बैक टू योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो। ब्रेक के बाद वापस स्वागत है जी आपका ऑन योर फेवरेट स्टेशन फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि इस बार मैं आपको दूंगा जी मौका टू विन समथिंग फ्रॉम इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ। दे हैव देयर ब्रांड न्यू स्टोर ओपनड अप एंड इट इज ऑन 5152 क्वाड्रेंट वे इन फोर्ट वर्थ। पीपल फॉर फोर्ट वर्थ, केलर, हर्स्ट, हैसलेट। अब आपकी जिंदगी में ग्रोसरी वाला जो स्यापा था वो खत्म होने को आ गया है जी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फोर्ट वर्थ, बिकॉज फोर्ट वर्थ डिडंट हैव मेनी स्टोर्स दैट कुड सफाइस द नीड्स ऑफ आवर साउथ एशियन कम्युनिटी। नाउ इंडिया बाजार, योर फेवरेट स्टोर इज देयर फॉर योर कन्वीनियंस। ऑथेंटिक ग्रोसरीज तो है ही हैं, साथ साथ फ्रेश प्रोड्यूस, स्पाइसेस, स्नैक्स, ऑल ऑफ योर देसी नीड्स। नाउ आपको मिल सकता है जी एक स्पेशल ग्रोसरी हैम्पर फ्रॉम दिस स्टोर इन फोर्ट वर्थ। मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल हर बार की तरह, जो देगा सही जवाब दे विल गेट देमसेल्व्स दिस गिफ्ट हैम्पर। विनर एक ही होगा। अब जो भी मुझे कॉल करेगा, पहले तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप जब कॉल कर रहे हैं तो आप फोर्ट वर्थ के इस स्टोर से जाके ये गिफ्ट हैम्पर ले सकें, इंजॉय कर सकें, एंड सेकेंडली दैट यू नॉट won this before in the last 30 days at least. All right, puchna ye hai mujhe ki aaj main ek celebrity ke birthday ki baat kar raha hoon. Born on today's date on the 27th of July, the year was 1990. Featured in Forbes India Celebrity 100 list and several accolades including National Film Award and two Filmfare Awards. JP Institute of Information Technology se, dhyan se suniyega, unhone apni engineering ki degree ki thi. JP Institute of Information Technology and starting mein ek fashion model bhi reh chuki hain. नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिला है, एंड मैनी अदर एक्लेड्स। बट अगर इनके करियर की बात की जाए तो टाइम्स ऑफ इंडिया और सिफी ने पहले इनका, यू नो, दे फाउंड हर व्हाइल शी वाज मॉडलिंग, एंड देन शी केम विद अ तेलुगु मूवी फर्स्ट जिसका नाम था निन्नो कडाइन, एंड उसके बाद बहुत सारी हिंदी फिल्में आनी शुरू हुई। उनमें से एक फिल्म का मैं लगाने लगा हूँ गाना। आपको ये बता दूं कि अभी रिसेंटली एक टूथपेस्ट की कमर्शियल में भी नजर आई है। कॉलर नंबर 3 हु गिव्स मी द राइट आंसर गेट्स देमसेल्व्स दिस गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ। हु इज दिस पर्सनालिटी आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे? स्टूडियो का नंबर 9722355555, कॉलर नंबर 3।

0: This was her first Bollywood movie. Let's see who we have with us on Fun Asia. Good evening to you. Radio ka volume kam, aapka volume zyada. I know that you're having a lovely time listening to the radio, but please reduce that. Good evening. Who's this?
1: Good evening. This is Swamijit.
0: Swamijit?
1: Swamijit?
0: Swamijit. Aisa theek bola main?
1: Chalo. Sorry?
0: Jeet bhai bol dein, aapko simple kar lete hain.
1: Achha, bol dijiye.
0: Jeet bhai, do you know who I'm talking about this evening?
1: I think it's Kriti Sanon.
0: Jeet bhaiya kehte hain Kriti Sanon. I'm going to keep that as one of the answers that I received. Good evening, Fun Asia. Who is this?
2: This is sir.
0: Sorry, who?
2: Ghanshyam.
0: Maine kaha ab to naam batate ruk gaye ki main kahin chala gaya ya phone line mein gadbad ho gayi. Ghanshyam. आयो कहां से घनश्याम. अच्छा घनश्याम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक है?
2: बस अच्छा है, चलता है जो
0: अच्छा है जो चलता है. मुझे कहते हैं, मेरे एक अंकल थे इंडिया में, वो कहते थे जो भी टाइम पास अच्छा हो जाए ना, वो वक्त अच्छा होता है. अच्छा जी,
2: वेरी गुड.
0: घनश्याम भाई, किसकी बात कर रहा हूं?
2: बोलो जी.
0: कीर्ति सेनन कहते हैं घनश्याम भाई. इनका भी आंसर नोट कर लिया है. तीसरे नंबर पे कौन बुलबुल या बुलबुला है? गुड इवनिंग फन एशिया, कौन बोल रहा है?
3: आई एम अरविंद अचल.
0: अचल जी कैसे हैं?
3: बस ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: अचल, आप फोटवर तक तो चल पाएंगे ना?
3: हाँ हाँ, गाड़ी से जाना है.
0: अच्छा,
3: चलना नहीं है.
0: अच्छा, मैंने कहा कहीं अचल बोले नहीं मैं नहीं चलूंगा. गाड़ी से जाना है. फोर्टवर्थ के पास रहते हैं क्या? फोर्टवर्थ में ही रहते हैं.
3: ऑफिस है, मैं जा सकता हूँ.
0: ऑफिस से जा सकते हो यार, कमाल के. मतलब देखो, इसको कहते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम है. अचल भैया, हु एम आई टॉकिंग अबाउट दिस इवनिंग?
3: कृति सेनन.
0: कृति सेनन, इफ आई कुड आस्क यू व्हाट इज वन मूवी दैट यू लाइक फ्रॉम हर?
3: उसकी एक मूवी आई थी अभी रिसेंटली, रोबोट बनी थी.
0: अच्छा, मतलब आपको ये ठीक लगता है कि रोबोट बना दो लेडीज को, कम से कम शांति रहेगी है? ये बड़े चालू है भाई अचल. चलो, मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस. यस, यू गॉट द राइट आंसर. इट इज इंडीड द ब्यूटीफुल, द गॉर्जियस कृति सेनन. आई एम गोना टेक योर इन्फॉर्मेशन ऑफ द ईयर. शी इज बोर्न ऑन टुडेज डेट. अ वेरी हैप्पी बर्थडे कृति जी. कहां यार आप, मतलब 6 साल छोटी भी आप मेरे से, पता है परफेक्ट एज ग्रुप बोलते हैं इसको, मतलब समझ रहे हो ना. पर अब आप सिंगल हो, मैं इतनी देर वेट नहीं कर पाया एक्चुअली, क्योंकि कहते हैं कि किसी लड़की को धोखा नहीं देना चाहिए. तो अब आप पहले मिली नहीं, ज्योति जी मिल गई, हम उन्हीं के होके रह गए. नहीं तो कहीं ना कहीं बरेली की बर्फी मैं आपको खिलाता, कहीं ना कहीं हाउसफुल पार्टियों में हम जाते, कहीं ना कहीं हम बताते कि दिल वाले क्या होते हैं. पर छोड़ो ना उस बात को. आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक तहे दिल से. एंड आई सीरियसली लव्ड हर रोल इन द मूवी मिमी. फ्रॉम द टीम हियर एट फन एशिया एंड फ्रॉम बंदा बिंदास, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू दिस ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी कृति सेनन.

0: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती। और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए, रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन।
1: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
2: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटा कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटा कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? Ya aap H1B pe hain and looking options with 5% or 10% or even 3% down. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189. Kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
0: Are you tired of the same arguments, reactions, and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents, and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques, and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
2: यार बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस.
3: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
2: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
3: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
2: ये क्या होता?
3: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
4: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
0: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
5: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
6: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
5: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
6: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट.
7: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.

0: Gala Mithi Mithi Bol, this was Aisha, the name of the movie. Sonam Kapoor, Abhay Deol, Amit Trivedi ka music isme dekhne ko mila tha. And I loved Amit Trivedi's music since the inception. Jab se aaye hain, wo kuch kuch naya leke aate hain. And I think he's a fantastic producer. This part of the show is brought to you by Vanessa Events. Agar aap dhoon rahe hain, koi event karna chahte hain, भाभी परेशान रहती है कि कैसे करेंगे ये इवेंट, तो भाभी लेट मी टेल यू, एक बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, उसका नाम है वैनेसा इवेंट्स। वेन्यू कहाँ से आएगा वो देंगे, खाना कौन करेगा वो भी उनकी हेडेक, डेकोर कौन लाएगा वो भी उनकी हेडेक, और बताओ इसके अलावा लोग वो आपने लेके आने। वैनेसा इवेंट्स पे हरी साहब हैं जिनको आप कॉल करेंगे एंड दे विल गेट यू ऑल द इन्फॉर्मेशन, दे विल गेट यू ऑल सेट। अच्छा, अगर आप ये कहेंगे ले मेरे पास तो वेन्यू ही नहीं है मार्विन, तो कोई बात नहीं, वेन्यू भी वही ढूंढ के देंगे आपको। सो वेन्यू हंटिंग से लेके फोटोग्राफी से लेके सारी मैनेजमेंट, डेकोरेशन, उसके साथ साथ खाना, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ एंड दिस इज वन स्टॉप शॉप। 4694428770 उनका फोन नंबर है, 4694428770, that's Vanessa Events for you. Make sure to check them out. Ek gana aur, I think do gaane aur hum squeeze in kar payenge. And pehle to aaj ka ek khas baat aapko batani hai ki today was the day in history when something important happened for all of us as kids and for many other kids. Kya tha?
1: Especially on a lovely spring day. There's nothing like a motor ride to relax one through winding roads, past the green meadows and down shady lanes.
2: Shut up.
1: Shut up! Why, soit me! You don't think I'm the kind that would keep blabbing. Some people never know when to stop. When I'm told to shut up, I shut up!
2: Shut up, shutting up.